ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जुलाई 2026 वार शुक्रवार, सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मंगल ध्वनि।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास

0: हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं, अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है अपनी गलती सुधारे, आलेख और वाचक स्वर होंगे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के।
3: सुप्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की एक कविता है, मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगा। आगे की बात कहने से पहले आइए इस कविता के एक पाठ से गुजर लेते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, मैं अपनी गलतियां जरूर सुधारूंगा मित्रवर, जरूर सुधारूंगा। इसलिए कि नदी की धारा से दूर तर उलट कर फेंक दिया जाता हूं मैं कूल से, अनजानी सिर्फ

0: एक भूल से पिलाना पानी उसे जो की है शीश पर, जिसे कंधे पर रख मैं चला बहुत दूर से। प्यारा बालक आज चीख रहा, उसकी पुकार तो साफ दीख सी रही। वह बालक मेरी अवहेलित आत्मा पाताल वासिनी सी, वह ठीक आज सिर पर कंधे पर आसीन। मैं पुनः उसे पाताल लोक में नहीं डाल सकता, मैं उसे उभारूंगा, मैं अपनी गलतियां जरूर सुधारूंगा मित्रवर, जरूर सुधारूंगा। यदि उठ न सकूं तो तुम्हें पुकारूंगा, हाँ तुम्हें। स्वतः मुक्तिबोध यहाँ अपनी आत्मा में ग्लानि का भाव देखते हुए उसे पाताल से निकाल कर ले आना चाहते हैं और अपने माथे पर धर लेना चाहते हैं। कहा गया है कि मनुष्य गलती का पुतला है, हम में से हर कोई गलती करता है, परंतु गलती सुधारने वाले कितने लोग हैं? निसंदेह बहुत कम। अधिकांश लोग अपनी आत्मा से गलती छुपाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एक बड़ी गलती करते हुए वे इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि उन्हें न तो पत्थर से फर्क पड़ता है न ही फूल से। इसलिए वे अपनी गलतियां सुधारने का जरा भी प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग जरा भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। वे अपनी आत्मा की हत्या अपने ही हाथों से करने के लिए सेकंड भी नहीं लगाते और दूने वेग से नई गलती के साथ उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मजीवी होते हैं, आत्मा के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं बल्कि उन्हें सार्वजनिक करते हुए उसमें सुधार करके दिखाते हैं। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में इस तरह के कई उदाहरण हैं, जिसमें वे अपनी गलती होने पर ग्लानि महसूस करते हैं और उस गलती को ठीक करते हैं। यही महान लोगों का, महाजनों का रास्ता है। गलती होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि गलती छुपाकर उससे ऊपर फिर नई गलती करना नैतिक अपराध है। हम सब के जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमसे चरित्र के प्रति दोष और आत्मा के प्रति नैतिक अपराध हो जाते हैं। तब कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु यह सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता तो ये है कि अपने परिचय क्षेत्र में आने वाले तमाम लोगों को अपनी गलती से अवगत करवाकर फिर से वो गलती न दोहराने का सबक लिया जाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। गलती हो जाने पर घबराएं नहीं, बड़ों को उसे छुपाएं नहीं, बल्कि कोशिश करें कि दोबारा वो आपसे न हो। एक महावाक्य है, जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं एक सीख है। इन अर्थों में प्रत्येक गलती हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गलती निकालना बहुत आसान है, पर उसे सही करना बहुत मुश्किल। इसलिए श्रोताओं, दूसरों की गलतियाँ तलाश करने की जगह अपनी खुद की गलती से सबक लें और फिर जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे निकल जाएं।
1: अभी आपने सुना आज का विचार, विषय था अपनी गलती सुधारे। आलेख और वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना के साथ।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस गान
1: एपिसोड 91 91।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है, सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्रीराम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से कर दें। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आपने सुना रामचरितमानस कान आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:40 और 30 सेकंड होने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग। 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 11 बजे आप सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 12:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत और दोपहर 12:40 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए वार्ता, विषय है हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार प्रेमचंद और वार्ताकार होंगी डॉक्टर मनीष कुमार सैनी। 8:45 पर समय रहेगा सुगम संगीत का। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, विषय होगा मेरा जेल का दूसरा अनुभव। वाचक स्वर होंगे श्री चंद्रशेखर जोशी के। 9:30

दोपहर 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा महिला जगत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विशेष वार्ता, विषय होगा गांव गांव तक न्याय, कानूनी जागरूकता से सशक्त नागरिक। वार्ताकार हैं श्रीमती नेहा खीड़िया, प्रस्तुति रहेगी श्रीमती पुनीत विश्नोई की और संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो सुनिएगा 1:05 पर कार्यक्रम महिला जगत में। 2:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

हमारी संध्याकालीन सभा में 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का और 7 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत। 7:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। 8 आप सुनेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का।

0: रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिचर्चा, नई शिक्षा नीति 2020। कार्यक्रम में सहभागी हैं श्री नवदीप सिंह बैस और श्री बजरंग सिंह राठौड़। संचालन किया है प्रशांत बिस्सा ने। प्रस्तुति सहायक हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास और प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेगा, और इस कार्यक्रम का संयोजन किया है अमित सिंह ने। तो सुनना ना भूलिए रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम परिचर्चा, नई शिक्षा नीति 2020। और 10:00 आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तान, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। अभी आपने सुना हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में सुनिए लघु वार्ता, विषय है खेती बाड़ी में मित्र कीटों का महत्व। वाचक स्वर हैं श्री सत्यनारायण शर्मा।
1: राम राम। आज अपन बात करा हाँ खेती बाड़ी में मित्र कीट और बियारो महत्व है। वो तो अपा जाना ही हाँ कि अभी किसान जी को है आपकी फसल रो घणो घणो उपज लेवण सारू कई तरह रा जतन करया करे। इन सारू वो आ देखे कि भाई जितनी बुआई करी है बीरो प्रति बीघा उत्पादन घणो घणो आवे, पर वो देखा हाँ कि आप कई बार फसलों ने नुकसान भी पहुँचे, और वो नुकसान हुए कीट जिका है सगला जिका कीट है वे फसलों ने नुकसान को नहीं पहुँचा हुआ है, पर किसान का ही करे कि जिका भी कीट देखे बियाने केमिकल या जिका छिड़काव कर कीटा ने मार दिया करे, पर सगला जिका कीट है वह नुकसान को नहीं पहुँचा। कई कीटी में ऐसा है जिका अपनी फसलों ने फायदो पहुँचा हुआ है, वे जिका फसलों ने नुकसान पहुँचा हुआ कीट है भी कीटा ने खा पर अपनी फसल ने फायदो करे। तो आज आप बात करा हाँ कि भाई अपने मित्र जिका कीट है भी यानी पहचान किया करा, और आप फसल उत्पादन जिको है वो घणो घणो किया लेवा।

0: किसान जिका है बे मित्र कीटा की पहचान होने खातर बहुत जरूरी है कि बे अपने मित्र कीटा की पहचान कर ले। मित्र कीट जिका न सिर्फ शत्रु कीटा ने मारे बिर सागे सागे फसल उत्पादन बढ़ाने में भी काफ़ी सहायक है। आम तौर पर किसान जब आप बाग में या फसला में या खेती में देखे कि कोई कीट जिका है प्रकोप कीटाणु है तो वो कीट ने शत्रु मानर बिन माथे केमिकलों छिड़काव करे जिको गलत है क्योंकि सगला जिका कीट है वह नुकसान पहुंचाओ को नहीं। तो कीट जिका है किसान ने आज जरूरी है कि भी कीटा की पहचान करे कि भाई यह कीट अपना फायदा वाला है कि नुकसान वाला है बिर अनुसार ही वो आप आगे उपाय जिको करें। तो इसी एक कीट है रेड लेडी बर्ड बीटल कीट। अगर किसी किसान रे बाग या खेत रमने रेड लेडी बर्ड बीटल कीट दिखाई देवे तो वो किसान भाग्यशाली है क्योंकि वो कीट जिको है किसान रे बाग और फसल में लगाने वाला बहुत सारा शत्रु कीटासु आप बाग और फसल ने बचाया करे। रेड लेडी बर्ड बीटल कीट और बीरो लार्वा बाग और फसल दोनों खातर ही फायदेमंद है। और अगर जहाँ बात करें पहचान रही तो रेड लेडी बर्ड बीटल कीट आमतौर पर लाल या नारंगी रंग रोया करे। इन कीटा रे शरीर माथे काला निशान बनया हुआ करे। हालांकि कुछ लेडी बर्ड बीटल जिका है वह काला भी है जहाँ पर बिहार ऊपर अक्सर लाल निशान बनया करे। फिर बात करा हाँ प्रेइंग मेंटिस कीट। आमतौर पर किसान टिड्डो समझ मेंटिस कीट ने मार दिया करे जबकि मेंटिस कीट जी का किसानारो मित्र कीट है। ई कीट ने खरीफ री फसलों पर हानिकारक कीड़ा ने खाओ तो देखी जाए और वो कीट हरे वैश्यक टिड्डेरी तरह दिखाया करे। अगलो जो को कीट है वो है ट्राइकोग्रामा कीट। हानिकारक कीटा ने खत्म करने सारू ट्राइकोग्रामा नामक कीट भी मददगार है। बस इन्हें एक कीट ने जिको प्रभावित इलाके बड़ छोड़ दो और पत्तियां रे जरिए चुन चुनर जिका नुकसान पहुंचने वाला कीट है भी इन्हें खत्म कर दिया करे। हालांकि वो केवल पत्तियां रे बारे लगन वाला कीटा ने माथे प्रभावी रख रहे पेड़ रे अंदर जिका कीट लागोड़ा है भी माथे वो कारगर होवे कोनी भी इन्हें सारू तो आपने कोई उपचार ही करना पड़सी। अगलो जो को कीट है वो है जियोकारिस कीट। जियोकारिस कीट एक परभक्षी कीट है जिको फसल में लगाने वाला रस चूसक कीटा ने नष्ट कराया करे। मकड़ियाँ यहाँ तो नाम आप सुने ही हैं और यहाँ कई प्रजातियाँ जी की पाया जा करे जी ग्राउंड लेयर खेता में पाया करे। ए फसल ने नुकसान पहुँचाने अलग अलग तरह हानिकारक कीटा ने परभक्षी रूप में पकड़ और नष्ट कर दिया करे। तो देखो किसान भाया अपने सावचेती रखनी है सगला जी का कीट है वह नुकसान पहुंचाओ कोनी। बहुत सारा जिका कीट ऐसा है जिका अपने फसल रह सारू लाभदायक है वह अपना मित्र रूप में काम करे और अपने खेत में पाऊन वाला हानिकारक कीटा ने नष्ट कराया करे। तो खेती में सावचेती रखो और फसल रो पूरे उत्पादन जी को है अपने ले और चौकी फसल जी की ले सा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आपने सुनी लघु वार्ता। विषय था खेती बाड़ी में मित्र कीटों का महत्व। वाचक स्वर थे श्री सत्यनारायण शर्मा के। 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक भजन।

0: अभी आपने सुना लोक भजन आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 17,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्ने पादोन द्विवादने सह 17,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधरनगरं प्रति गमिष्यति।

नमस्कार, प्रणाम और क्षमा गणी। सुबह के इस बेहद खास और ताजगी से भरे कार्यक्रम सुप्रभात में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। घड़ी की सुइयों ने सुबह के ठीक 7 बजा दिए हैं। पूरब की दिशा से सूरज देवता अपनी सुनहरी किरणों के साथ मरुधरा की पावन माटी को छू रहे हैं। हवाओं में महक है और परिंदों की चहचहाट हमें याद दिला रही है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। एक नई सुबह

का मतलब है एक नया अवसर, एक नया आसमान और अपनी उम्मीदों को सच करने का एक नया हौसला। इसी खूबसूरत एहसास और सुबह की ऊर्जा के साथ दिन का आगाज करते हैं सुरों के इस पहले गुलदस्ते के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: जीवन में कई बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है ध्यान रखना हमारी सेहत का। जीवन का बहुत बड़ा धन है हमारी सेहत, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आयुर्वेद का एक कालजय नियम है ऋतुचर्या, जिसका अर्थ है बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खान पान में बदलाव करना। हम जिस जगह पर रहते हैं, यानी कि मरुधरा में, जहां का मौसम अपनी चरम सीमाओं के लिए जाना जाता है, यहां प्रचंड गर्मी है और सर्दी के मौसम में सर्दी भी, वहां खानपान का संतुलन रखना और भी जरूरी हो जाता है। जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर की पाचन शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर हम इसे यूं समझें कि जब हल्की ठंड या गुलाबी सर्दी का मौसम हो तो शरीर को अंदरूनी गर्मी के लिए बाजरा, मेथी, गोंद के लड्डू और गुनगुने पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। यह हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी हमें सिखाते रहे हैं। वहीं तपती गर्मियों का मौसम हो तो शरीर की गर्मी की कमी को रोकने के लिए बीकानेरी छाछ, पुदीने का पना और मटका कुल्फी और फलों का सेवन, सुपाच्य पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज के इस दौर में हम अक्सर मौसमी फलों को छोड़कर 12 महीने मिलने वाले डिब्बा बंद फूड की तरफ भागते हैं, जो हमारी सेहत के लिए और हमारी इस धरती के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। प्रकृति ने हर मौसम के हिसाब से हमारी धरती पर फल और सब्जियां उगाई है। बारिश के दिनों में जहां तली भुनी चीजों से बचकर पत्तेदार सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए, वहीं बदलते मौसम में खट्टे फल, आंवला, अदरक और तुलसी जैसी चीजों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जब हम अपने खान पान का ख्याल रखेंगे तो हर मौसम के संक्रमण से बचे रहेंगे। और कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन, इसलिए जो भी खाएं जितना हो सके स्थानीय खाएं, जैसा कि जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और मौसम के अनुसार खाएं। क्योंकि अगर हम मौसम के अनुसार खाएंगे और जो यहाँ

जो यहाँ उगता है वो खाएंगे तो हम वो हमारे शरीर के लिए सुपाच्य होगा और हमारी सेहत का भी ख्याल रखेगा। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अब बात करते हैं आज के समय की एक ऐसी गंभीर समस्या पर जिससे हम जाने अनजाने बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं। तकनीक ने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद से और अपनों से दूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी स्क्रीन एडिक्शन यानी मोबाइल और सोशल मीडिया की लत की। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह कतई नहीं कि आप तकनीक का इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि तकनीक को खुद पर हावी न होने दें। आप एक बार सोचिए, या क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले हमारा हाथ हमारे आसपास रखे मोबाइल फोन पर जाता है और हम दिन भर बिना किसी वजह के अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली लाइट हमारे दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जिससे अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, आंखों में सूखापन और कई बार गंभीर मानसिक तनाव पैदा होता है। तो बात यह है कि इस डिजिटल जाल से हम बाहर कैसे निकले। इसके लिए हमें शुरुआत में बहुत छोटी छोटी कड़ियों से करनी होगी। सबसे पहले सुबह उठने के बाद कम से कम आधे घंटे तक हम फोन को हाथ न लगाएं। कोशिश करें कि उस अच्छे समय को टहलने के लिए, घूमने के लिए, ठंडी हवा में सांस लेने के लिए और योग करने के लिए इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा और दूसरा नियम, भोजन करते समय और अपने परिवार के साथ बैठते समय नो गैजेट जोन बनाएं, यानी कि उस वक्त फोन को अपनी डाइनिंग टेबल या बैठक से दूर होना चाहिए। रात को सोने से ठीक एक घंटे पहले अपने फोन को अपने से दूर रखना चाहिए। जब आप इन सब बातों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनों के लिए समय निकलेगा, आपके अपने लिए समय बचेगा और हम अपने दिल और दिमाग की बात अपनों से कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हम अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल का उपयोग जरूरत के समय करें, बिना मतलब अननेसेसरी जरूरत न होने पर भी मोबाइल को स्क्रॉल न करते रहें। रोज छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, छोटी छोटी आदतें बनाइए जिससे कि हम इस मोबाइल फोन से कुछ दूरी बना सकें। तो अब हम कार्यक्रम में आगे चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

वक्त रेत की तरह होता है। मरुधरा के धुनों की तरह हाथों से कब फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। गानों, यादों और बातों का ये हमारा खूबसूरत कारवां अब अपनी आज की मंजिल तक पहुंच चुका है और ये घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। पर चलते चलते इतना ही कहेंगी कि आज जो भी आपसे गुफ्तगू हुई है उसका आप ध्यान दें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनका आदर सम्मान करें और आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: अभी आपने सुना गीत फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से। गीत को गाया था मन्ना डे ने, लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था एस टी बर्मन ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अब आप सुनेंगे फिल्म अमर प्रेम से गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: श्यामल बाबू आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी गाओ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म गाइड से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अब आप सुनिए फिल्म प्यार का मौसम से गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आपने सुना फिल्म आन से गीत, आवाज थी मोहम्मद रफी की और इसे संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में फिल्म शोर से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।

0: मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य

0: हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बने।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत

0: और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कन्नडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर

0: सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है हॉर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 1,00,000 की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While

0: Chandigarh and Punjab during the next 2 to 3 days. In Jammu and Kashmir, Meteorological Centre has forecast a significant change in weather across the Union Territory from tomorrow, with chances of heavy rain and flash floods in vulnerable areas. And now, for a look at today's newspapers, it's over to VC Pramod.
1: Thank you, Shagun. Most of the dailies have covered the Prime Minister unveiling various projects in Punjab, Haryana and Chandigarh to flag off India's first hydrogen power train. BIMSTEC National Security, SARS discuss ways to combat terrorism, organized crime, mentions the statesman, while the Asian Age writes BIMSTEC nations to bolster anti-terror, maritime law links. Equity model replaces grants. Centre joins Ventura Capitals to invest in chip firms, informs the Financial Express. The Hindu writes, Parliament set to take up bills to amend FCRA, prevent insult to Vande Mataram. ED cracks alleged terror trail across 5 states, reads a headline in the Pioneer. The Tribune headlines, after over 100 resignations, Centre tightens ISRO exit rules. Supreme Court flags third language timing, mentions the Pioneer. In editorial titled, A Game Bigger Than Its Grand Spectacle, the Indian Express writes, as Spain and Argentina face off in what will be their first meeting in the FIFA World Cup since 1996, the finale promises a grand spectacle. Last-minute winners, comebacks, extraordinary underdog performances and teeming moments of individual brilliance have made sure that the football itself has never been overshadowed. The spotlight now falls on Spain and Argentina. And finally, the Times of India informs that about the first private orbital rocket launch on Saturday. The papers add, Skyroot Aerospace is days from becoming India's first private space tech startup to launch an orbital class rocket. Vikram 1 is set to lift off at 11:30 from Sriharikota. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish-e-Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3-match series 1-1. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनिए वार्ता। विषय है हिंदी साहित्य के युग परिवर्तक रचनाकार प्रेमचंद। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मनीष कुमार सैनी।
3: जी, रचनाकारों में प्रेमचंद का नाम सर्वोपरि है। वे कथा सम्राट कहलाते हैं, उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। उनका उपन्यास साहित्य और निबंध साहित्य भी जीवन की गुत्थियों का दिग्दर्शन कराने वाला है। उनका अनुवाद साहित्य, बाल साहित्य और नाटक साहित्य भी अत्यधिक उल्लेखनीय है। वे ठीक वैसे ही हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार थे जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया जाता है। उनके साहित्य में भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के भरपूर दर्शन होते हैं। प्रेमचंद के पात्र आशावादी हैं, कर्मवीर हैं, आदर्शवादी हैं और मूलतः यथार्थवादी हैं। हिंदी साहित्य में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रवर्तक प्रेमचंद ही माने जाते हैं। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ, जो बनारस से 6 मील दूर पड़ता है। सन 1936 में काशी में उनका निधन हो गया। प्रेमचंद के पिता का नाम मुंशी अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता मुख्य रूप से किसान थे। निर्धनता के कारण उनके परिवार का पालन पोषण बहुत ही कठिनाई से होता था, अतः विवश होकर पिता को नौकरी करनी पड़ी। उन्हें डाक खाने में क्लर्क की नौकरी मिल गई। प्रेमचंद के जन्म के समय उनका वेतन 20 रुपये था। नौकरी पेशा होने पर भी उनके घर का वातावरण किसानों जैसा ही था और उनका जीवन स्तर निम्न मध्य वर्ग का ही रहा। यही कारण था कि प्रेमचंद को बाल्यावस्था से ही कृषक जीवन के वातावरण से तथा मध्यवर्गीय परिवार में पालन पोषण होने के कारण जीवन की कठिनाइयों और

विपत्ति झेलने के सामर्थ्य का भी अनुभव हुआ। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती थीं। अपूर्ण अभिलाषाओं और दरिद्र जीवन को लेकर वे जीवन पथ पर आगे बढ़े। प्रेमचंद की 3 बहनों में 2 की अकाल मृत्यु हो गई थी, 1 बहन दीर्घजीवी रही। 5वें वर्ष में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। उस समय उर्दू का बोलबाला था। उनके पिता भी उर्दू पढ़े हुए थे, अतः उनकी रुचि के कारण ही प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और इस भाषा पर प्रेमचंद ने शीघ्र ही अधिकार कर लिया। उनके उर्दू में लेखन की शुरुआत का कारण भी यही था। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तभी उनकी माताजी बीमार हो गई और 6 महीने बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वे बचपन में ही माँ के स्नेह और वात्सल्य से वंचित हो गए। जीवन के इन सारे अनुभवों की अभिव्यक्ति आगे चलकर उनकी रचनाओं में हुई। कुछ समय बाद उनके पिता की बदली जीमनपुर नामक स्थान पर हुई। वहां उनके पिता ने एक गंदा सा मकान किराए पर लिया जिसका किराया 1.5 रुपया मासिक था। उस समय प्रेमचंद एक तंबाकू वाले के यहाँ तंबाकू के पिंडों के पीछे बैठकर पढ़ा करते थे। यहीं उन्होंने उर्दू की एक बृहद कृति तिलिस में ए होश रूबा पढ़ी और फिर तो 13 वर्ष की वय में ही उन्होंने उर्दू के कई ग्रंथ चर्चित पढ़ डाले। इन रचनाकारों में रतननाथ सरसार, मिर्जा रुसबा और मौलाना सरर की रचनाओं को उन्होंने बहुत ही रुचिपूर्वक पढ़ा। रतनलाल सरसार के फसाने आजाद का तो आगे चलकर उन्होंने आजाद कथा के नाम से हिंदी में अनुवाद भी कर डाला। प्रेमचंद निर्धन थे पर बहुत ही स्वाभिमानी भी थे। उन्होंने परिश्रम और ईमानदारी से कमाई करके उपन्यास पढ़े थे। वे कठिनाइयों से कभी नहीं घबराए। जीवन में कठिनाइयां जिस गति से बढ़ती गई उसी गति से उनका अध्ययन प्रेम भी बढ़ता गया। उस समय कुछ पुराणों के उर्दू अनुवाद प्रकाशित हुए तो उन्हें भी प्रेमचंद ने पढ़ा और तिलिस्मी दुनिया की भांति ही पौराणिक कथारस का आस्वादन किया। जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडी पर आगे बढ़ते प्रेमचंद जीवन में कभी हताश नहीं हुए। वे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने ट्यूशन की अंधेरी कोठरी में तेल की कुप्पी जलाकर पढ़ाई की किंतु शिक्षा प्राप्ति में कोताही कभी नहीं की। सन 1910 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय उन्होंने महाजनों के कटु व्यवहार का भी अनुभव किया। निर्धनता के कारण उन्हें महाजनों से उधार लेना पड़ता था। उस समय गांव में महाजनों की तूती बोलती थी। उधार दिए रुपयों के बल पर ही वे गरीबों का खून चूसते थे, उनका भरपूर शोषण करते थे। प्रेमचंद के साहित्य में महाजनों के अत्याचारों के प्रामाणिक बिंब देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही महाजनों के कृत्यों का चित्रण अपने साहित्य में किया है। उनके उपन्यास गोदान का होरी हो, चाहे उनकी कहानी पूस की रात का हल्कू हो, ऋण की समस्या से ग्रस्त किसानों को अपनी खेती से वंचित होने और मजदूरी करने की व्यवस्था के पीछे महाजनी ऋण व्यवस्था ही एक बड़ा कारण रहा है। इंटर परीक्षा पास करने से पूर्व उन्होंने एक स्कूल में 18 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी भी की थी। सन 1901 से प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। उनका बचपन में ही विवाह कर दिया गया था पर पत्नी से अनबन ही रही और सन 1905 में पत्नी से संबंध विच्छेद करके एक बाल विधवा शिवरानी देवी से पुनः विवाह कर लिया। प्रेमचंद ने सन 1919 में बीए उत्तीर्ण की और जीवन यापन के लिए अध्यापन को अपना लिया। बनारस, कानपुर, गोरखपुर और बस्ती आदि स्थानों पर अध्यापन के दौरान कुछ वर्ष तक वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सब इंस्पेक्टर के रूप में महोबे में रहे। वहां के जनजीवन को भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अध्यापक और सब इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने जीवन के बहुत सारे कटु अनुभव प्राप्त किए। इतने बड़े भूभाग के निर्धन लोगों की निर्धनता के अनेक हृदय द्रावक दृश्यों से प्रेमचंद बहुत व्यथित हुए जिनका चित्रण उनके साहित्य में भली भांति उजागर हुआ है। बचपन में मातृविहीन प्रेमचंद के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। इनकी वी माता से जन्मे पुत्र का नाम मेहताब राय था जिससे प्रेमचंद बहुत प्रेम करते थे। प्रेमचंद की उदारता का गुणगान करते मेहताब राय थकते नहीं थे। वे बहुत ही सीधे साधे ढंग से रहते थे पर भाई को अच्छा खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रहने देते थे। प्रगतिशील विचारों के धनी प्रेमचंद की सूक्ष्म दृष्टि सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में गहरी पैठ रखती थी। प्रेमचंद की रचनाओं में सांप्रदायिक सौहार्द, धर्म भीरुता, स्वार्थपरता, कर्मठता और आदर्शवादी यथार्थ का भरपूर चित्रण देखने को मिलता है। मानव मन की दुर्बलता को भी प्रेमचंद ने बखूबी चित्रित किया है। वैचारिक स्वातंत्र्य और लेखकीय स्वाधीनता को बनाए रखने में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंग्रेजी सरकार ने कई बार उनका दमन करना चाहा पर वे उनके आगे नहीं झुके। वे उर्दू में

पाव राय नाम से लिखते थे। अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को प्रतिबंधित कर दिया। अपने लेखन को प्रतिबंधित होते देख प्रेमचंद ने हिंदी में लेखन की शुरुआत की। जमाना अखबार के संपादक दया नारायण निगम के कहने पर प्रेमचंद नाम से उनकी रचनाएं छपने लगी और आगे चलकर यही नाम हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार के रूप में ख्याति लब्ध हुआ। प्रेमचंद से अनेक रचनाकारों ने प्रेरणा प्राप्त की। आज भी हिंदी पाठकों ने जो कहानियां अथवा उपन्यास पढ़े हैं उनमें प्रेमचंद की रचनाएं सर्वाधिक पढ़ी गईं और प्रेमचंद के पाठकों के स्मृति पटल पर अमिट रूप से अंकित भी हुई। प्रेमचंद की कहानियों की बात करें तो ईदगाहे, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, सवा शेर गेहूं, मंत्र, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि अनेक अविस्मरणीय कहानियां पाठकों की संवेदना को झकझोरने लगती हैं। उनकी कालजी कहानी कफन और ठाकुर का कुआं तो बार बार चर्चा के केंद्र में रहती हैं। इसी प्रकार उनके उपन्यासों की बात करें तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और कायाकल्प के पात्रों को भी हम अपने आसपास पाते हैं। उन्होंने

0: गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि अनेक अविस्मरणीय कहानियां पाठकों की संवेदना को झकझोरने लगती हैं। उनकी कालजयी कहानी कफन और ठाकुर का कुआं तो बार बार चर्चा के केंद्र में रहती हैं। इसी प्रकार उनके उपन्यासों की बात करें तो रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और कायाकल्प के पात्रों को भी हम अपने आसपास पाते हैं। उन्होंने संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी नामक तीन नाटकों की भी रचना की। प्रेमचंद कुछ विचार शीर्षक से उनके निबंध संग्रह ने भी बहुत यश कमाया है। बच्चों के लिए रामचरित्र पर भी उन्होंने लेखनी चलाई। उनका सृजन बहुआयामी था और अपने पूर्ववर्ती रचनाकर्म को नई दिशा देने वाला था। तभी तो इस युग प्रवर्तक रचनाकार को कालजयी कहा जाता है। इनका सृजन आम भारतीय जनमानस का प्रतिबिंब कहा जा सकता है। संपादन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमचंद ने जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस नामक पत्रों का समय समय पर संपादन किया। अपने संपादन में उन्होंने उच्च आदर्शों की स्थापना की। सन 1930 में उन्होंने हंस का प्रकाशन शुरू किया। हंस उन्हें अति ही प्रिय था। इसी के लिए वे फिल्मी दुनिया में गए पर वहां टिक नहीं पाए। आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें वहां अनेक कट अनुभव हुए, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में उन्होंने वणिक वृत्ति को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। प्रेमचंद ने जीवनियां भी लिखी, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी और कलम, तलवार और त्याग इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। उन्होंने हंस में आत्मसार शीर्षक से अपनी आत्मकथा नामक विशेषांक में प्रकाशित की। अनुवादों में टोलस्टॉय की कहानियां तथा अनातोले फ्रांस के वायस का अहंकार नाम से किया गया अनुवाद प्रसिद्ध है। यद्यपि प्रेमचंद का युग गुलामी और दासत्व का युग था, भारतीय निम्न मध्यवर्गीय लोगों पर जमींदारों, महाजनों और अंग्रेजों के अत्याचारों का अंत नहीं था, पर लोगों की जीवनी शक्ति अदम्य थी और लोग आजादी के लिए संघर्षरत थे। यही कारण था कि प्रेमचंद की रचनाओं में शोषित और शोषक वर्ग का यथार्थ प्रकट हुआ है। प्रेमचंद के लेखन में गांधीवादी दर्शन को भी प्रश्रय मिला है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण उनके लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में सुधारवादी और यथार्थोन्मुखी आदर्श का उपस्थापन हुआ है और राष्ट्रीय चिंतन मनन के साथ सुविचारित सृजन के कारण ही प्रेमचंद आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार सिद्ध होते हैं।
1: अभी आपने सुनी वार्ता, विषय था हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक रचनाकार प्रेमचंद और वार्ताकार थे डॉक्टर मनीष कुमार सैनी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में
2: एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामों में। हमारे अब्र में क्या मीर हंसता पाया हो वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ समय को।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुगम संगीत। 9 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। विदेश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, इनमें राज्य के 8 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले एक माह में करीब 2,00,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। ये रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में है। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है।

0: और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। उन्होंने ये बात जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय सेना की वीर गाथाओं और शौर्य के प्रतीकों से आमजन को परिचित कराने की योजना बनाने को कहा। साथ ही प्रदेश भर में शहीद स्मारकों के रखरखाव और उनके एक रूपीय मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉनसून तैयारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने नालों की समय पर सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और बारिश के बाद टूटी सड़कों की जल्द मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन के इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बताया कि मृतकों में 5 महिलाओं की मृत्यु भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई, जबकि 3 महिलाओं और एक नाबालिग की मृत्यु बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। NTA ने कहा कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान के 5 विद्यार्थियों ने भी शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को देश विदेश के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों पर 13 भाषाओं में पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों के लंबे समय से लंबित कार्यों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के अनुसार 12 जून से 15 जुलाई तक 18,953 सेवा शिविर लगाए गए। इनमें लगभग 10,500 ग्रामीण और 8,000 से अधिक शहरी शिविर शामिल हैं। ग्रामीण शिविरों में 1,90,000 से ज्यादा नामांतरण और 1,00,000 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। लगभग 17,500 रास्तों के प्रकरण सुलझाए गए। शहरी शिविरों में 42,252 पट्टे जारी किए गए। 13,000 से ज्यादा नामांतरण के मामलों का निस्तारण हुआ। शिविरों में कई अन्य सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। झालावाड़ में राजसखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
2: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टार को हमारी जो राजीव गांधी जो

0: संचालित करेंगे, सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारे राजीव का की महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेंगी। यहाँ पर जो राजीव का की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
1: राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने हरियाणा के डबवाली में डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन अकड़ तोड़ के तहत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपित लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था। वो गर्भवती महिलाओं को हरियाणा ले जाकर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराने का काम करता था। टीम ने डिकॉय ग्राहक के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधायी गौरव यात्रा तथा पूर्व और वर्तमान विधायकों के ऐतिहासिक समागम की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित अनेक गणमान्य लोगों के बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, इनमें राज्य के 8 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले माह में करीब 2,00,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आपने सुना लोकगीत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 9:15 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है मेरा जेल का दूसरा अनुभव। वाचक स्वर हों श्री चंद्रशेखर जोशी के, प्रस्तुति है श्री अशोक कुमार की और संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने।

नमस्कार, गांधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में सुनिए मेरा जेल का दूसरा अनुभव विषय पर गांधी जी के विचार। सख्त सजा पाए हुए कैदियों से सरकार को हर रोज 9 घंटे काम लेने का अधिकार है। कैदियों को हमेशा शाम के 6 बजे कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। सुबह 5:30 बजे उठने की घंटी बजती है और 6 बजे कोठरी का दरवाजा खोला जाता है। कोठरी में बंद करते समय और कोठरी से निकालते समय कैदियों की गिनती की जाती है। गिनती विधि पूर्वक और जल्दी हो, इसके लिए कैदियों को अपने अपने बिस्तर के पास सावधानी से खड़े रहने का हुक्म होता है। हर एक कैदी को अपना बिस्तर लपेटकर उचित स्थान पर रखकर तथा हाथ मुंह धोकर 6 बजे से पहले तैयार हो जाना पड़ता है और 7 बजे अपने काम में लग जाना होता है। काम कई प्रकार के होते हैं। पहले दिन हमें आम रास्ते के पास जो खुली जमीन है उसे खोदने के लिए ले जाया गया। लगभग 30 भारतीय कैदियों को ले गए थे जिनकी हालत काम करने लायक नहीं थी। उनका जाना जरूरी नहीं था, हमें काफिरों के साथ ले गए थे। जमीन बहुत कड़ी थी और उसे कुदाली से खोदना था, इसलिए काम सख्त था। धूप तेज पड़ रही थी। काम करने की जगह जेल से करीब

डेढ़ मील दूर रही होगी। हम सब भारतीय कैदी काम में उत्साह से जुट गए, लेकिन काम की आदत बहुत कम लोगों को थी, इसलिए सभी बहुत ज्यादा थक गए। काम करने वालों में बाबू तालेवंत सिंह का लड़का रवि कृष्ण भी था। उसे काम करते देख मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन उसकी मेहनत देखकर मैं खुश हो रहा था। संतरी बहुत तेज स्वभाव का था, चलाओ चलाओ की पुकार लगाता रहता था। उसकी ये पुकार सुनकर भारतीय कैदी घबरा जाते थे। कुछ को मैंने रोते हुए भी देखा, एक आदमी का पांव सूजा हुआ देखा। ये सब देखकर मेरा दिल रोता था, फिर भी मैं सबसे कहता था कि संतरी क्या कहता है उसकी परवाह किए बिना सबको अपना काम सच्चे दिल से करते जाना चाहिए। मैं खुद भी थक गया, हाथ में बड़े बड़े छाले उठाए, उनमें पानी झरने लगा, कमर झुकाना मुश्किल मालूम होता था और कुदाली का वजन मन भर जैसा लगता था। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता था कि मेरी लाज रख, मुझे अशक्त न बना और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपना काम बराबर करता रहूं। इस तरह ईश्वर पर भरोसा रखकर मैं अपना काम करता जाता था, लेकिन मैं सुस्ताने के लिए जरा रुका तो संतरी मुझे डांटने फटकारने लगा। मैंने उससे कहा, डांट फटकार की जरूरत नहीं है, मुझसे जितनी कड़ी मेहनत हो सकेगी मैं करूंगा। इसी समय श्री क्षीणा भाई देसाई को मैंने मूर्छित होते देखा, अपनी जगह से हट नहीं सकता था, इसलिए कुछ देर तक मैं रुका रहा। संतरी वहां गया, मैंने देखा कि मुझे जाना ही चाहिए, इसलिए मैं दौड़ा। दूसरे दो भारतीय साथी भी आ गए। हम लोगों ने क्षीणा भाई के मुख और सिर पर पानी छिड़का, उन्हें होश आया। दारोगा ने दूसरों को तो काम पर वापस भेज दिया, लेकिन मुझे उनके पास बैठने दिया। क्षीणा भाई के सिर पर काफी ठंडा पानी डाला, तब कहीं उन्हें आराम महसूस हुआ। संतरी से मैंने कहा कि वे पैदल चलकर नहीं जा सकेंगे। इस पर उसने गाड़ी मंगवा दी और मुझे हुक्म दिया कि मैं उन्हें गाड़ी में ले जाऊं। क्षीणा भाई के माथे पर पानी डालते हुए मैं सोचने लगा, मेरे शब्दों पर विश्वास रखकर कितने ही भारतीय जेल आए हैं, यदि मैंने उन्हें गलत सलाह दी हो तो मुझे कितना पाप लगेगा, मेरे कारण मेरे इन भाइयों को कितना दुख उठाना पड़ता है। ऐसा सोचकर मैंने गहरी सांस ली। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं फिर सोचने लगा और गहरे विचार में डूब गया। बाद में मैं हंस पड़ा, मुझे प्रतीत हुई कि मैंने जो सलाह दी है वो ठीक ही है। यदि दुख भोगने में ही सुख है तो फिर दुख से घबराने का कोई कारण नहीं है, ये तो मूर्छा की ही बात थी। अगर मृत्यु का प्रसंग उपस्थित हो तो भी मैं दूसरी सलाह नहीं दे सकता। मैंने सोचा कि जन्म भर के बंधन की अपेक्षा इस तरह दुख भोग कर बेड़ियों से मुक्त हो जाना ही हमारा कर्तव्य है, और तब निश्चिंत होकर मैं क्षीणा भाई को हिम्मत रखने की सलाह देने लगा। बापू कहते हैं कि गाड़ी के आते ही क्षीणा भाई को उसमें सुलाकर मैं ले गया। मैंने बड़े दारोगा से शिकायत की, उसकी जांच हुई और संतरी को फटकार मिली। क्षीणा भाई को फिर दोपहर में काम पर नहीं ले जाया गया। उसी तरह चार अन्य भारतीय कैदी भी अशक्त दिखे, बाकी सब फिर काम में लगे। दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक काम करना पड़ता है। इस समय हमारी देख रेख गोरे संतरी के बदले एक काफिर संतरी को सौंपी गई थी। ये काफिर संतरी गोरे संतरी की अपेक्षा अच्छा था, वो बहुत नहीं टोकता था, कभी कभी ही बोलता था। इसके सिवा इस समय काफिरों और भारतीयों को उसी जगह लेकिन अलग अलग हिस्सों में काम दिया गया था। हम लोगों को उनकी तुलना में कुछ नर्म जमीन खोदने को दी गई थी। बापू कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह ठेका लिया था उसके साथ मेरी बात हुई, उसने कहा कि भारतीय कैदियों के काम से उसे नुकसान होने की संभावना है। मेरी ये बात उसने स्वीकार की कि भारतीय एकाएक काफिरों जितनी मेहनत नहीं कर सकते। इसके सिवा मैंने उससे कहा कि भारतीय लोग संतरी के डर से काम करने वाले नहीं हैं, वे तो सिर्फ खुदा का डर रखकर उनसे जितना बनेगा उतना काम करेंगे। लेकिन अपना ये विचार मुझे बाद में काफी हद तक बदलना पड़ा। दूसरे दिन हमें फिर बाहर निकाला गया, लेकिन गोरे संतरी के साथ न भेजकर एक काफिर संतरी के साथ भेजा गया। ये संतरी भी पिछले दिन वाला काफिर नहीं था, उससे कह दिया गया था कि वो हमें बिल्कुल न टोके। ये थे इंडियन ओपिनियन के 9 जनवरी 1909 के अंक में छपे

अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय था मेरा जेल का दूसरा अनुभव। वाचक स्वर थे श्री चंद्रशेखर जोशी के, प्रस्तुति थी अशोक कुमार और संयोजन किया था श्री अमित सिंह ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओ, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओ, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से

0: ले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
1: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे, जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
0: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
1: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है, जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
0: जी,
1: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
0: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है, जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना, जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है,
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्च

0: होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
1: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप

0: करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
1: क्या 20 करोड़ साल?
0: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
1: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
0: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित, तुम बताओ।
2: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको, मैं बताती हूँ।
0: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
0: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था, और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
0: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
0: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर, ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर, आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो, विशाल और शांत महासागर, ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में

0: लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, तेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि तेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
3: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15,000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनिंकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है।
5: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा

0: कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊलजनूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीश चंद्र

0: की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामी नाथन खर्राटे लेने लगा।
1: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगमंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एनिमल से गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: है वो पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और साथियों की आवाज में फिल्म रेड टू से गीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Waves OTT app now and watch for free. तेरे
1: प्यार में आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में फिल्म तू जूठी मैं मक्कार से गीत। लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर

0: आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: अभी आपने सुना बी पराग वसाल दादानी और साथियों की आवाज में फिल्म फाइटर से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में फिल्म सत्य प्रेम की कथा से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पलक मुचल की आवाज में। फिल्म का नाम है धोनी। गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत है अमाल मलिक का।

जुबिन नौटियाल की आवाज में गाए वाई चीट इंडिया फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कुछ भूले बिसरे गीत फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आरजू। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

ये रात फिर न आएगी फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। गीत को लिखा था एस एच बिहारी ने, संगीत था ओपी नैयर का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी। गीत के बोल हैं राजा मेहंदी अली खान के, संगीत है मदन मोहन का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में वो कौन थी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे राजा मेहंदी अली खान के, संगीत था मदन मोहन का। कुछ भूले बिसरे गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कभी कभी, गीत के बोल हैं साहिल लुधियानवी के, संगीत है खय्याम का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गाइड फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोलते शैलेंद्र के संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। गीत के बोले हैं मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत दिया है आर टी बर्मन ने।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था आडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम फिल्म संगीत में आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, बोल हैं गुलजार के, संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।
1: बरसों बाद ढूंढने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई।
2: तुम नहीं बदलोगी,

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर। गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीत है एसडी बर्मन का।

गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है टैक्सी ड्राइवर। गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
2: किक किक किक किक।
1: टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

ஆனது அரை மக்களாம் அவர்கள் இருந்த

0: हम दोनों फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीत को लिखा था जयदेव ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मरु चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है गोलमाल। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।
1: एक तो

किशोर कुमार की आवाज में गोलमाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था अनाड़ी। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के टोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल BSF की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का BSF कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय DGMA ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप

0: आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मेरू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर और शाम 7:45 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। हमारे ही चैनल से हमारे इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

में अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जूट बैग और इको फ्रेंडली बैग्स का निर्माण और लघु उद्योग, लो ब्लड प्रेशर समस्या से तुरंत राहत के घरेलू नुस्खे, बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाएं। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता गांव गांव तक न्याय कानूनी जागरूकता से सशक्त नागरिक। वार्ताकार होंगी श्रीमती मेघा खेड़िया, प्रस्तुति रहेगी श्रीमती पुनीत बिश्नोई, संयोजन रहेगा श्री अमित सिंह का। कार्यक्रम में इसी के साथ आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:05 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा सृजनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, दक्षिणायन दिवस, चंबल नदी और घड़ियाल, भारतीय मानसून जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से किया जाएगा। हमारे ही चैनल से शाम 6:05 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ही फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:40। शाम 7:00 ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत सुनेंगे आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे मरुस्थल का मोती बाजरा, पालतू पशु के काट लेने पर क्या करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा, गोचर ओरण वन भूमि संरक्षण। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

रात आज 8:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारू चैनल से। हमारे ही चैनल से रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे परिचर्चा नई शिक्षा नीति 2020। सहभागिता होगी श्री नवदीप सिंह बैंस और श्री बजरंग सिंह राठौड़ की। संचालन होगा प्रशांत बिस्सा का। प्रस्तुति सहायक हैं श्रीमती बरखा थानवी व्यास और प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेघा। संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। रात 10:00 आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम गुलिस्तां आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे शौकत हुसैन खान, गायन होगा ख्याल पूरिया। कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर की रोला मारू चैनल से प्रसारित किया जाएगा। हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोली मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज में।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी ये गजल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में भी अपनी गजल सुनी। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगली गजल चित्रा सिंह की आवाज में।

चित्रा सिंह की आवाज में आपने सुनी ये गजल। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुनी गजल। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोल मारो चैनल से। कार्यक्रम के अंत में अगली गजल सुनिए चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में।

चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मेरे चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत, डोमिनिक और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीत है इस्माइल दरबार का।

ये गीत आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति मोहम्मद सलामत डोमिनिक और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीत था इस्माइल दरबार का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है तेरे नाम। समीर के लिखे बोलों को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कलाकारात्मक और अरुदीप नारायण की आवाजों में तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था हिमेश रेशमिया का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अंतिम गीत लीजिए।

श्रेया घोषाल की आवाज में गाए फिल्म तुमसा नहीं दिखा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.9।

0: मीडल हर्ट्ज पर। दोपहर के एक बजने को ही कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आज तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी गांव में ही रहेगा। कल प्रातः भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग का आग्रह करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने का कार्यक्रम है। सरकार को उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाकर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। ये बात उन्होंने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कही। श्री शेखावत ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्त नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। श्री शेखावत ने आरोप लगाया कि जब पहले महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था तब विपक्ष का रुख महिलाओं के हित में नहीं था। संसद के आगामी मॉनसून सत्र में ये मुद्दा फिर से उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि एक न्यायपूर्ण, समान और करुणामय समाज का निर्माण करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से समान अवसरों, निष्पक्ष व्यवस्था और मानवीय गरिमा के सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया, जहां हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया है। ये सुविधा कल से 24 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयोग के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा 2025 तथा निरीक्षक

0: शिक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:05 हुए हैं। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करते हैं साक्षी गोस्वामी और उषा सिंघल।

0: बहनें जरा सोचिए, अगर किसी के नाम का अर्थ हो गवाह, जो सही बात को समझे, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाए, समाज में सकारात्मक सोच का संदेश दे और अपनी बातों से कानों में अमृत घोल दे, बताइए उसका नाम क्या होगा। जी जी, बिल्कुल सही पहचाना सखियों, वो है हमारी प्यारी सखी साक्षी, जो आज के सफर में मेरी भी हम सफर है और आप सभी सखियों की भी।
1: वाह वाह, बहुत ही अच्छा परिचय दिया है तुमने मेरा। अब मेरी बारी है बहनों आपसे एक पहेली पूछने की। अच्छा बहनों, जरा बताइए वो कौन है जो सुबह की पहली किरण जैसी उजली है, जो हर दिन नया उत्साह, नई शुरुआत और नया जोश लेकर आती है आपके पास, जिसकी बातें होती हैं सकारात्मकता से भरी और बिखेरती है आपके नाम अपने ही नाम की तरह अपनापन और प्रेम। तो बताइए बहनों उसका नेम। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया है आपने, उसका नाम है उषा। और उषा है आज मेरे साथ मेरे इस सफर को और भी खूबसूरत बनाने।
0: साक्षी, अब अपने सखियों का आईक्यू टेस्ट तो हो गया है, तो करते हैं हम मिलकर उनका स्वागत और शुरू करते हैं अपने महिला जगत के सफर को।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उससे पहले स्वीकार कीजिए अपनी दोनों सखियों
1: साक्षी और
0: उषा का प्यार भरा नमस्कार।
1: उषा, कहा भी जाता है कि जीवन में एक सही सोच और एक अच्छा शब्द कई बार किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हर किसी के पास समय तो है लेकिन एक दूसरे को सुनने का धैर्य कम होता जा रहा है।
0: सही कह रही हो साक्षी, ऐसे में यदि हम किसी की बात ध्यान से सुन लें, उसका मन समझ लें, तो शायद उसकी आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत करती हैं। एक मुस्कान, एक धन्यवाद, एक प्रशंसा या समय पर बोले गए दो हौसलों के शब्द।
1: और उषा, यही तो हमारे महिला जगत कार्यक्रम का उद्देश्य भी है ना, हम सबके जीवन के जुड़े हुए विषयों पर बात करना, जो ना सिर्फ जानकारी दे बल्कि सोचने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा भी दे।
0: हाँ साक्षी, क्योंकि बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से शुरू होता है, और ऐसे ही कुछ कई विषयों को लेकर हम आए हैं आप सखियों के साथ।
1: बिल्कुल उषा, कार्यक्रम की शुरुआत में ही सबसे पहले तो हमने बहनों को दिमागी कसरत करने पर मजबूर कर दिया है ना, तो उनकी जब दिमागी कसरत करवा दी है तो क्यों ना उनके दिमाग को अब देते हैं आराम और पेश करते हैं गीतों का पैगाम।

0: साथै रविवारको सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बिकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: उषा, अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपने कार्यक्रम में कई सारी जानकारियां भी देते हैं और कई विषय से बहनों को रूबरू भी करवाते हैं, यानी कि एक तरीके से हम जागरूकता ही फैलाने का काम करते हैं और यही आकाशवाणी हमारा यही काम करती है, जागरूकता फैलाने का। तो आज हम बता दें बहनों कि आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस।
2: साक्षी, अब बहुत सी सखियों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर 17 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस क्यों मनाया जाता है।
1: बिल्कुल ऊषा, प्रश्न होगा। दरअसल बहनों, 17 जुलाई 1998 को इटली की राजधानी रोम में रोम संविधि को स्वीकार किया गया था। इसी ऐतिहासिक समझौते के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और ये न्यायालय उन गंभीर अपराधों पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया जो पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है।
2: साक्षी, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि न्याय की कोई सीमा नहीं होती। जब मानवता पर संकट आता है तब पूरी दुनिया मिलकर न्याय और शांति की रक्षा का संकल्प लेती है।
1: बिल्कुल, न्याय एक ऐसा शब्द है जो भले ही बहनों आपको छोटा लगे लेकिन अपने भीतर समानता, सम्मान, अधिकार और मानवता का व्यापक अर्थ समेटे हुए है। न्याय केवल न्यायालय के निर्णय तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निष्पक्षता और समान अवसर का प्रतीक भी है।
2: जैसे यदि हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें साक्षी, तो महिलाओं के लिए न्याय का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की समान भागीदारी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा उषा, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि न्याय केवल अधिकारों की ही बात नहीं करता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जैसे कि घर में अगर बेटा बेटी है तो उसमें भेदभाव ना करें, किसी के साथ अगर आप अन्याय होता देख रहे हैं तो उसके खिलाफ भी आपको आवाज उठानी चाहिए, ये सब हमारे नैतिक कर्तव्य हैं।
2: बिल्कुल साक्षी, शायद इसीलिए कहा गया है कि जहां न्याय है वहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां शांति है और जहां शांति है वहां समृद्ध समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: और बिल्कुल उषा, जहां न्याय है वहां उम्मीद भी है। तो आइए हम इंतजार करते हैं एक ऐसे न्याय का जो हर किसी को खुशियां ही खुशियां दे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: उषा, भी हमने बात की थी न्याय दिवस की, लेकिन क्या न्याय सभी के लिए समान है, या फिर न्याय तक पहुंचने के लिए हमें किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, क्या ये सब बातें सभी लोग जानते हैं? शायद नहीं, है ना। तभी हमने अपनी बहनों की जागरूकता के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया था डॉक्टर नेहा खिड़िया को, तो उन्हें और उन्होंने विस्तार से बताया है हमको न्याय के बारे में। तो आइए बहनों, एक वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है गांव गांव तक न्याय, कानूनी जागरूकता से सशक्त नागरिक, और वार्ताकार हैं डॉक्टर नेहा खिड़िया।
5: श्रोताओं नमस्कार। कानूनी जागरूकता केवल न्यायालयों, वकीलों या न्यायाधीशों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर किसान, हर महिला, हर मजदूर, हर विद्यार्थी, हर बुजुर्ग और हर नागरिक के जीवन का हिस्सा है। अक्सर हम सुनते हैं कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन क्या वास्तव में हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानते हैं? यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो, यदि किसी किसान के साथ धोखाधड़ी हो जाए, यदि किसी बुजुर्ग की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया जाए, यदि किसी युवक के बैंक खाते से साइबर ठगी के माध्यम से धन निकाल लिया जाए, या किसी गरीब व्यक्ति के पास न्यायालय जाने के लिए आर्थिक साधन ना हो, तो क्या वह न्याय प्राप्त कर सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ, अवश्य। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान न्याय का अधिकार प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 39 क में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध कराए और आर्थिक अथवा अन्य कारणों से वंचित लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। इस संवैधानिक संकल्प को व्यवहार में लागू करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा संसाधनों का गठन किया गया। हमारे ग्रामीण समाज में अनेक समस्याएं केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि न्याय केवल अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए है। कुछ लोग वर्षों तक अन्याय सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनकी सहायता के लिए सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई हैं। कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंड देना नहीं है। कानून का वास्तविक उद्देश्य समाज में शांति, समानता, सुरक्षा और सम्मान की स्थापना करना है। कानून हमें केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमारे कर्तव्यों को भी बोध कराता है। समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना भय, बिना भेदभाव और बिना आर्थिक बाधा के न्याय प्राप्त कर सके, यही हमारे संविधान की मूल भावना है। ग्रामीण भारत, विशेषकर राजस्थान के गाँव में आज भी अनेक लोग भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, उत्तराधिकार, मजदूरी, घरेलू हिंसा, साइबर ठगी, उपभोक्ता शोषण, बाल विवाह, दहेज और सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल न्यायालय में मुकदमा दायर करने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कानूनी जानकारी प्राप्त करने से भी संभव है। इसलिए

विधिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। आज देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दालसा, तालुका विधिक सेवा समितियां, लोक अदालतें और विधिक सहायता क्लिनिक इन उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे बल्कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। इसके माध्यम से न केवल निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है बल्कि विधिक साक्षरता शिविर, जागरूकता अभियान और लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को सरल, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं कि हमारा संविधान हमें कौन से अधिकार देता है और ये अधिकार हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं। भारत का संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है बल्कि ये प्रत्येक नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय का संरक्षक है। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्राप्त हो। यही कारण है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है तथा राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि आर्थिक या सामाजिक स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 39 क समान अवसर के आधार पर न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की सुरक्षा और समानता पर निर्भर करती है। हमारे संविधान ने महिलाओं को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त अनेक कानून महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसे चुपचाप सहने की आवश्यकता नहीं है, उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। यदि दहेज की मांग की जाती है, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, संपत्ति में अधिकार से वंचित किया जाता है या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो कानून उसके साथ खड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं यह मान लेती हैं कि पारिवारिक विवाद घर का मामला है और बाहर शिकायत करना उचित नहीं। लेकिन याद रखिए, हिंसा कभी भी पारिवारिक परंपरा नहीं हो सकती, वह एक अपराध है। आज प्रत्येक महिला को यह जानना चाहिए कि वह पुलिस थाने, महिला हेल्पलाइन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर है तब भी उसे न्याय को पाने के लिए वकील की फीस देने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पात्र महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आज कानून पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार प्रदान करता है। यह केवल कानूनी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की ही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार विवाह का पंजीकरण, उत्तराधिकार, भरण पोषण और सम्मानतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक महिला का कानूनी अधिकार है। इन अधिकारों की जानकारी परिवारों को मजबूत बनाती है और विवादों को कम करती है। राजस्थान सहित कई राज्यों में वर्षों से बाल विवाह एक सामाजिक चुनौती रहा है। आज कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी संबंधित प्रशासन या बाल संरक्षक अधिकारी को दी जाए। कई बार महिलाएं वर्षों तक मानसिक या शारीरिक हिंसा सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनका भाग्य है, लेकिन यह सोच बदलनी होगी। यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो समाज, परिवार और प्रशासन सभी की जिम्मेदारी है कि उसकी सहायता करें। कानून का उद्देश्य परिवार तोड़ना नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। केवल कानून बना देने से समाज नहीं बदलता, परिवर्तन तब आता है जब लोग स्वयं जागरूक बनते हैं। यदि हमारे गांव में किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी बच्ची की पढ़ाई छुड़ाई जा रही हो, तो चुप रहना समाधान नहीं है। जागरूक नागरिक होने का अर्थ केवल अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी है। किसान केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का पेट भरता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कानूनी अधिकारों से भी परिचित हो। वह अपने कानूनी अधिकारों से भी परिचित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की सीमाओं, रास्तों, सिंचाई, उत्तराधिकार, बंटवारे, पट्टे, फसल के भुगतान, बैंक ऋण तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। कई बार जानकारी के अभाव में किसान वर्षों तक कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि किसान अपने सभी भूमि संबंधित दस्तावेज, राजस्व अभिलेख, बैंक रिकॉर्ड तथा सरकारी पत्र सुरक्षित रखें। यदि किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या किसी अधिकारी द्वारा अनुचित व्यवहार

किया जा रहा है तो संबंधित विभाग के समक्ष शिकायत की जा सकती है और आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। आज गाँव तक भी ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल भुगतान और विभिन्न प्रकार की सेवाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी की संभावनाएं भी बढ़ी है। यदि कोई दुकानदार समाप्त अवधि एक्सपायरी डेट की दवा बेचता है, वजन गलत देता है, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है या दोषपूर्ण वस्तु बेचकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करता है तो उपभोक्ता के पास शिकायत करने का अधिकार है। आज मोबाइल फोन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग, भुगतान, सरकारी योजनाएं, पेंशन, छात्रवृत्ति और अनेक सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन इसी सुविधा का लाभ उठाकर साइबर अपराधी लोगों को ठगने का प्रयास भी करते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति को फोन आया और उससे कहा गया कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आपका केवाईसी पूरा नहीं है, आपने लॉटरी जीती है, आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा, आपके रिश्तेदार दुर्घटना में घायल हैं। घबराहट में लोग अपने बैंक खाते की जानकारी, एटीएम नंबर, ओटीपी या यूपीआई पिन साझा कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं। इसलिए कुछ सरल बातें याद रखें। कभी भी ओटीपी किसी के साथ भी साझा न करें। यूपीआई पिन केवल भुगतान करने के लिए होता है, पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। बैंक कभी भी फोन पर आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछता। यदि साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें और निकटतम पुलिस थाने या साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से धन की वसूली की संभावना बढ़ सकती है। हमारे समाज में आज भी अनेक लोग यह सोचते हैं कि न्याय केवल उन्हीं को मिल सकता है जो महंगे वकील कर सकते हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य है आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा इस व्यवस्था का शीर्ष संस्थान है, जबकि प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा कार्य करता है। यह संस्थाएं पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराती है तथा लोक अदालतों और विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करती है। लोक अदालत भारतीय न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ अनेक प्रकार के ऐसे विवाद जिनमें समझौते की संभावना हो, आपसी सहमति से शीघ्र और कम खर्च में सुलझाए जा सकते हैं। लोक अदालत का निर्णय विधि के अनुसार सिविल न्यायालयों की डिक्री के समान प्रभाव रखता है और सामान्यतः उनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे समय, धन और मानसिक तनाव तीनों ही बचत होती है। कानून केवल न्यायालयों की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है कि वह स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेगा तभी न्याय वास्तव में गांव तक पहुंचेगा। बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। उनका स्वास्थ्य, सुरक्षित और शिक्षित होना केवल परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य की जिम्मेदारी है। यदि किसी बच्चे से मजदूरी कराई जाती है, उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उसके साथ हिंसा या शोषण होता है तो यह केवल नैतिक रूप से ही नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी गंभीर विषय है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य वातावरण में विकास का अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि यदि किसी बाल विवाह, बाल श्रम या बच्चों के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न दिखाई दे तो संबंधित प्रशासन, बाल संरक्षण तंत्र या विधिक सेवा संस्थानों को इसकी सूचना दें। हमारे बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के निर्माण में लगाया है, इसलिए उनके सम्मान, सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी भी है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा की जाती है, उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो वे संबंधित प्राधिकरणों तथा विधिक सेवा संस्थानों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी भी कानून की सफलता केवल उसके बनने से नहीं होती बल्कि तब होती है जब आम नागरिक उसके बारे में जानते हो और उसका लाभ उठा सके। इसी उद्देश्य से देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समितियां समय समय पर विधिक जागरूकता शिविर, कानूनी सहायता क्लिनिक

0: लोक अदालतें, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, विधि आधिकारिक कार्यक्रम तथा जन जागरूकता अभियान आयोजित करती हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालय की चार दीवारी तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। गांव में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर, कानूनी परामर्श, नुक्कड़ नाटक, महिला जागरूकता अभियान और विद्यालय स्तर के कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि लोगों में अपने अधिकारों के प्रति विश्वास भी उत्पन्न करते हैं। कानून का ज्ञान केवल वकीलों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। हम स्वयं कानूनी रूप से जागरूक बनेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और न्याय, समानता तथा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।
1: मैंने अभी आपने सुनी वार्ता गांव गांव तक न्याय, कानूनी जागरूकता से सशक्त नागरिक, और वार्ताकार थी डॉक्टर नेहा खेड़िया। बहनों, जैसे सरकार हमारे न्याय के लिए नित नई योजनाएं बनाने के लिए तत्पर रहती है, वैसे ही सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है भारतीय सेना। आइए भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खैर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: उषा, इतनी बातें हो गई हमारी, मगर बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गई कि कल तो तुम मार्केट में घूम रही थी, है ना, तो क्या खरीद के लेकर आई, ये तो बताओ मुझे।
1: मार्केट? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, तुम भी थी क्या वहाँ?
0: बिल्कुल, जहाँ पर तुम वहाँ मैं तो होंगी, है ना। मैं तुमसे थोड़ा सा पीछे थी, तुम उससे आगे थी, इसलिए शायद तो मुझे नहीं देख पाई, लेकिन मैंने तुमको देख लिया।
1: अच्छा।
0: और जो तुम्हारे हाथ में एक जूट का बैग था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था।
1: मतलब ये बताकर तुमने इस बात का सबूत भी दे दिया है कि हाँ, वास्तव में तुमने मुझे देखा था।
0: बिल्कुल, कल जो जूट का बैग था वो भी बहुत खूबसूरत था, और जो तुम आज अपने साथ लेकर आई हो वो भी बहुत सुंदर है। तो ये लगता है कि तुमने कई सारे जूट के बैग्स का स्टॉक कर रखा है ना।
1: बिल्कुल साक्षी, वास्तव में क्या है कि हम सखियों का एक ग्रुप बना हुआ है, और आजकल पर्यावरण सुरक्षा की जो इतनी हिदायतें हम सुनते रहते हैं ना, तो हमने ग्रुप में निर्णय लिया कि पॉलिथीन का बहिष्कार करेंगे और इको फ्रेंडली बैग्स को अपनाकर खुद से एक अच्छी शुरुआत करेंगे।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुमने, ये और बहुत प्रेरणादायी भी है। और जब इसी बात पर मैं भी तुमको बताना चाहूंगी कि एक मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, कुछ समय पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई, और वो ज्यादा पढ़ी लिखी हुई भी नहीं थी।
1: अच्छा।
0: और हम सब मोहल्ले वासियों ने मिलकर उनके साथ उनके कपड़े के बैग बनाने का सामान जुटाने में मदद की, और उन्होंने भी ना उसको एक लघु उद्योग का रूप दे दिया, और उन्होंने एक व्यवसाय खोल दिया, और उन्होंने उससे जूट के बैग्स भी बनाए, बोतल के कवर भी बनाए, और धीरे धीरे उनकी आमदनी होने लगी, और अब उसको उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी पहचान बनाने लगी हैं वो।
1: अरे वाह साक्षी, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन महिला को ये भी बताना कि बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो बहुत कम ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध करवाती हैं, ताकि वो और अधिक आत्मनिर्भर हो सके। और देखो ना, अपनी स्वयं की आय से वो महिला आत्मनिर्भर भी हो गई होगी, और प्लास्टिक के स्थान पर जूट या कपड़े के बैग के उपयोग से आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण भी तो हम दे सकेंगे।
0: बिल्कुल, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: बिल्कुल।
0: वैसे भी तुमने सुना होगा ना कि प्रकृति सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच की नहीं। और ये विचार हमको सिखाता भी है बहनों कि प्रकृति के संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदारी से उपयोग करना ही हम सबका कर्तव्य भी है।
1: बिल्कुल सारगर्भित बात कही है तुमने साक्षी। साक्षी ऐसा करो कि तुम मेरे मुझसे उस सखी का जिसको तुमने प्रेरणा दी है उस महिला का फोन नंबर वगैरह शेयर करो, तब तक हम अपनी सखियों को इस गीत के लिए छोड़ देते हैं कि वो गीत का लुत्फ ले उठाएं।
0: बिल्कुल।

0: उषा, मैंने कहीं पढ़ा था कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, लेकिन सही आदतों की मिट्टी में समझदारी जरूर उगती है।
1: बहुत सही बात कही है तुमने साक्षी। जिस बच्चे को पैसे की कीमत समझ आ जाती है, वो जिंदगी की कीमत भी समझने लगता है।
0: बिल्कुल सही बात उषा। एक किस्सा तुमको बताती हूँ कि एक बार मेरी बहन बाजार गई अपनी बेटी को लेकर। बेटी ने एक खिलौना देखा और जिद करने लगी कि मम्मी ये खिलौना मुझे चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी।
1: बच्चे अक्सर ऐसे जिद करते हैं।
0: तो मेरी बहन ने कहा कि घर में कितने सारे खिलौने रखे हैं और उनमें से कुछ से तो तुम खेलती भी नहीं हो। तो बेटी चुप हो गई। फिर बहन ने उसे एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब हम बिना जरूरत के हर चीज खरीद लेते हैं तो कुछ दिनों बाद उसकी खुशी भी खत्म हो जाती है और पैसे भी वेस्ट होते हैं, वो अलग।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी सीख दी है तुम्हारी बहन ने। उस दिन तुम्हारी भांजी ये सीख गई होगी कि हर पसंद की चीज खरीद लेना समझदारी नहीं होती, और यहीं से बच्चों को पैसे की अहमियत सिखाने की शुरुआत होती है। साक्षी,
0: बिल्कुल,
1: जब वो समझेंगे कि एक एक रुपए के पीछे माता पिता की मेहनत होती है, तब वो खुद सोच समझ कर खर्च करना सीखेंगे।
0: बिल्कुल उषा, आजकल के बच्चों को तो लगता है कि पैसे तो एटीएम मशीन से निकल जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एटीएम पैसे थोड़ी बनाता है, बल्कि माता पिता की मेहनत की कमाई वापस देता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही पैसे की अहमियत समझाना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही साक्षी, पैसे की कीमत सिखाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बहनों कि आप बच्चों को कंजूस बना रही हैं, बल्कि आप तो उन्हें समझदार बना रही हैं। उन्हें बताइए कि जरूरत और इच्छा में क्या फर्क होता है।
0: बिल्कुल बहनों, और अगर आपका बच्चा हर चीज के लिए बार बार जिद करता है तो उसको तुरंत पूरी करने के बजाय उससे पूछें कि क्या तुम्हें इसकी सच में जरूरत है या सिर्फ तुम्हारा मन कर रहा है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा बच्चों को छोटी छोटी बचत की आदत भी डालिए, जैसे गुल्लक में पैसे जमा करना, जन्मदिन पर अगर उसे कुछ पैसे मिले हैं तो उनका एक हिस्सा बचाना, या किसी जरूरी चीज के लिए थोड़ा इंतजार करना।
0: बिल्कुल,
1: इससे साक्षी उनमें धैर्य और पैसे की कीमत दोनों समझ आएंगे।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और इन सभी बातों के अलावा बहनों, घर की छोटी छोटी बातें भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, जैसे कि कमरे से निकलते वक्त लाइट बंद कर देनी चाहिए, पानी बेकार ना बहाएं, या फिर खाने की बर्बादी ना करें। कहते भी है ना, उतना ही लो थाली में जितना व्यर्थ ना बहे नाली में। तो ये आदतें केवल संसाधन ही नहीं बचाती बहनों, बल्कि ये भी सीख देती हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है।
1: याद रखिए बहनों कि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। यदि वे अपने माता पिता को सोच समझ कर खर्च करते, बचत करते और जरूरत के अनुसार खरीदारी करते देखेंगे तो वही आदतें उनके जीवन का भी हिस्सा बन जाएंगी।
0: कहने का मतलब इतना है बहनों कि बच्चों को सिर्फ पैसे कमाना मत सिखाइए, बल्कि पैसों की कद्र करना भी सिखाइए, क्योंकि जिस बच्चे को मेहनत और पैसे का मूल्य समझ में आ जाता है ना, वो जीवन में हर सफलता का असली कीमत समझने लग जाता है।
1: और साक्षी, अब हमें भी समझना होगा ना कि बच्चों, हमारी बहनों के मन में क्या चल रहा है। वो इंतजार कर रही हैं एक गीत का, तो चलिए उनको सुनवाते हैं एक बेहतरीन नगमा।

0: उसका घर हो या कार्यस्थल, हम महिलाएं अक्सर सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत को जो है ना वो सबसे आखिर में रख देती है, है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: कई बार हमें हमारा शरीर कई हिंट्स भी देता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
1: सही कह रही हो साक्षी। जब शरीर बार बार थकने लगे, चक्कर आने लगे और बिना किसी कारण कमजोरी महसूस हो, तो इसे केवल थकान समझकर इग्नोर ना करें। कई बार ये लो ब्लड प्रेशर का संकेत भी हो सकता है।
0: बहनों, लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन की वो स्थिति है जब रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है। इससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं।
1: और ये परेशानी महिलाओं में अधिक देखने में मिलती है साक्षी। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे समय समय पर भोजन न करना, जो कि अक्सर महिलाओं के साथ शिकायत होती है, है ना। दिन भर की व्यस्तता में पानी कम पीना, या ऐसा वैसे मैं भी करती हूँ। मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव, गर्भावस्था या प्रसव के बाद कमजोरी, खून की कमी या लगातार तनाव।
0: बहनों, वजह तो आपको पता चल ही गई क्योंकि उषा ने बता दी, और एक वजह तो खुद भी उषा करती है कि पानी कम पीती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके लक्षणों पर आप गौर करिए। यदि आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, शरीर में कमजोरी या थकान महसूस हो रही है, या फिर धुंधला दिखाई देने लग गया है, तो ठंडा पसीना आ रहा है, या फिर हाथ पर आपके ठंडे पड़ रहे हैं, घबराहट या बेहोशी जैसा महसूस हो, तो इन सभी बातों को सीरियस लें और उपाय भी करें।
1: हाँ, लेकिन कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं कि जब अचानक से आपको लो ब्लड प्रेशर हो जाए, तो पहले बैठ जाएं या लेट जाएं, पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें ताकि मस्तिष्क का रक्त का प्रवाह बेहतर हो सके। अपने को वो करना चाहिए साक्षी कि अपने तकिया जो है वो सिर पर से हटाकर और पैरों के नीचे रख लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: है ना। कई बार शरीर में पानी की कमी ही ब्लड प्रेशर गिरने का कारण हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिए।
0: तो सुन रही हो ना उषा, पर्याप्त पानी पिए, है ना। और नमक चीनी का घोल, नींबू पानी या ORS का घोल भी बनाकर पी सकती हैं। और अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो या फिर आपको एलर्जी ना हो कैफीन से, तो एक कप चाय या कॉफी अस्थायी रूप से राहत दे सकती है। और जो जरूरी बातें हैं बहनों, कि आप अपना ध्यान रखिए, जैसे कि सुबह का नाश्ता तो आप कभी भी ना छोड़ें, लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, आयरन, फॉलिक एसिड और प्रोटीन युक्त भोजन लें, और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। और ज्यादा रक्तस्राव हो या फिर मासिक धर्म के दौरान, तो आप डॉक्टर से जांच कराना ना भूलें।
1: साथ ही बहनों, गर्भावस्था या प्रसव के बाद नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराती रहें। यदि लो ब्लड प्रेशर बार बार हो, बेहोशी आए, सीने में दर्द हो, सांस लेने में परेशानी हो या लगातार कमजोरी बनी रहे, तो बिना देर किए चिकित्सकीय सलाह जरूर लें। केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना।
0: बिल्कुल उषा, महिलाएं अक्सर ये कहती है ना कि पहले घर का काम पूरा कर लेते हैं, फिर अपनी सेहत

0: का ध्यान रख लेंगे। लेकिन सच तो ये है बहनों कि अगर हमारी सेहत ही साथ नहीं देगी तो घर की खुशियां भी अधूरी रह जाएंगी। बहनों आपका स्वस्थ रहना कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि पूरे परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: तो अपने शरीर के संकेतों को भी सुनिए। जैसे मैं आज अपने लिए बना रही हूँ कि वादा कर रही हूँ साक्षी से कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और पानी पीने में ध्यान रखूंगी, है ना। तो बहनों ध्यान रखिए, घर की मुस्कान तभी तक कायम रहती है जब तक उस घर की महिला स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वास से भरी रहती है।
0: तो आइए बहनों आज खुद से एक छोटा सा वादा करें कि सबका ख्याल रखने के साथ साथ आप अपनी बहन अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगी, है ना, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत है और हमारे कार्यक्रम की ताकत है आप। तो आइए आपकी मुस्कान को अपने कार्यक्रम की ताकत बढ़ाते हैं और सुनाते हैं ये गीत।

0: थोड़ी फिक्र थोड़ी कद्र कभी कभी खैर खबर, इन दवाओं में होता है बड़ा असर।
1: बिल्कुल, और इन दवाओं से जो असर होता है ना वो बिल्कुल लगता है आपके दिल तक, क्योंकि हम जो बहनें हैं आपसे पूछने आती हैं ना, आपकी थोड़ी सी फिक्र और थोड़ा सा कदर आपकी करने आती हैं।
0: बिल्कुल, तो इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते रहें, आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने अपनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतनी ही, इजाजत दीजिए अपनी सखी उषा सिंघल
1: और साक्षी गोस्वामी को। नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोले मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में सुनाए जाएंगे।
1: Noon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages.

0: निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक

0: स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहेम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वो कोलकाता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वह राष्ट्रपति माया सेंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनोवस्का दावकोवा क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित

0: पहुंचेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है तमाशा। अलका याग्निक का साथ दिया है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के, संगीत है AR रहमान का।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में तमाशा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत था एआर रहमान का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए बेनी दयाल, दिव्य कुमार और बिना का गोम्स की आवाजों में। फिल्म का नाम है तीन। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत है क्लिंटन सरजो का।

बेनी दयाल, दिव्य कुमार और बिनाका गुम्स की आवाजों में आपने सुना तीन फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था क्लिंटन सराजो का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आतिफ असलम की आवाज में। फिल्म का नाम है ट्यूबलाइट। गीत के बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत है प्रीतम का।

फाइव नाइट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज में। गीत के बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत था प्रीतम का। फिल्म संगीत हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। फिल्म का नाम है दे दे प्यार दे। गीत के बोल है कुणाल वर्मा के, संगीत है अमाल मलिक का।

अरिजीत सिंह की आवाज में दे दे प्यार दे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल थे कुणाल वर्मा के, संगीत था अमाल मलिक का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, सुनिए अरिजीत सिंह की ही आवाज में। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

अरिजीत सिंह की आवाज में राबता फिल्म का गीत अभी आपने, माफ कीजिएगा, एजेंट विनोद फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के अंत में अगला गीत लीजिए, सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में, उनका साथ दिया है पलक मुचल ने। फिल्म का नाम है काबिल। गीत के बोल हैं नासिर फराज के, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

जुबिन नौटियाल और पलक मुचल की आवाजों में गाए काबिल फिल्म की इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीटिंग में 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं हिंदी समाचारों के साथ। समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
1: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

0: योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारम्भ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब समय है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी का।

0: कुछ बातें किताबों में मिल जाती है
1: और कुछ बस किसी के साथ में।
0: तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूँ आपकी दोस्त गीता सोनी
1: और मैं हूँ आपकी साथी प्रियंका सोनी। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा, अगर नहीं भी बीता तो कोई बात नहीं, अब हम जो है आपके साथ मुस्कुराने और गपशप करने।
0: लेकिन उससे पहले मुझे एक शिकायत है तुमसे।
1: अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी शिकायत भी शुरू हो गई तुम्हारी?
0: शिकायत ये है कि ये जो तुम्हारे हाथ में पेन है ना, वो एक्चुअली मेरा है।
1: अरे ओ अच्छा, मुझे पता नहीं चला। अब पेन हाथ में आ जाए ना तो फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ बनने लगता है मुझसे।
0: अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम आज हमारे दोस्तों के लिए कोई जरूरी नोट लिख रही हो।
1: नोट कहाँ, जरा देखो तो, पूरा पन्ना लाइनों गोल गोल घेरों और न जाने क्या क्या से भर दिया मैंने।
0: पता है ये आदत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बहुत से लोग फोन पर बात करते करते या कहीं इंतजार करते हुए कॉपी के कोने में ऐसे ही फूल पत्तियां ना जाने कैसे कैसे डिजाइन बनाने लगते हैं। और बचपन में तो ये आदत मेरी भी थी।
1: बचपन में मैं तो अब भी यही करती हूँ, कई बार बाद में देखकर खुद भी सोचती हूँ कि आखिर मैंने बनाया क्या है।
0: वो तो तुम्हारी नोटबुक देख के ही लगता है कि आधी पढ़ाई हुई है और आधे में आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है।
1: क्या कुछ भी, सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सब हम जानबूझकर नहीं होता। कभी गोल गोल लाइनें, कभी छोटे छोटे बॉक्सेस, पता नहीं कभी लाइंस, हाथ अपने आप ही चलता रहता है।

0: वही तो, पहले मुझे भी लगता था कि ये सिर्फ मेरी ही आदत है, लेकिन बाद में समझ आया कि ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं।
1: और पता है, ऐसा करने के बाद में एक अजीब सा सुकून भी मिलता है, जैसे दिमाग थोड़ी देर के लिए बाकी सारी बातों से, टेंशन से छुट्टी पर चला गया हो,
0: जैसे किसी ने दिमाग का रिफ्रेश बटन दबा दिया।
1: हाँ,
0: वैसे भी एक तरह से ये क्रिएटिविटी तो है।
1: वो तो है ही। और वैसे एक बात बताऊं, जब कभी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है ना, तब भी मैं ऐसा अक्सर करती हूँ।
0: हाँ, शायद क्योंकि उस समय दिमाग एक ही चीज पर टिक जाता है, वरना आजकल तो जो हमारा टेंशन है वो कितना जल्दी इधर उधर हो जाता है।
1: हाँ, अब देखो ना, हम किसी और काम के लिए फोन उठाते हैं और चलते हुए थोड़ी देर बाद में याद आता है कि फोन खोला ही किसी और रीजन से था, अभी कुछ और ही कर रहे हैं।
0: और तब तक हम कितने नोटिफिकेशन दिख चुके होते हैं और ना जाने कितने ही वीडियोस को स्क्रॉल कर चुके होते हैं।
1: सही कहा। और फिर कहते भी हैं कि आज तो पूरा दिन पता ही नहीं चला कहाँ चला गया।
0: वैसे क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, किसी को गाना गाना पसंद है, कोई कविता लिखता है, तो किसी को फोटोग्राफी पसंद है, तो कोई क्रोशिया सीख रहा है, कोई पुराने कपड़ों में कुछ नया बना रहता है,
1: और कुछ लोग तो खाना बनाते बनाते भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, और फिर घर वाले पूछते हैं कोई साइंस प्रैक्टिकल किया है या कोई नई रेसिपी बनाई है।
0: लेकिन ये बात तो है कि ऐसे ही क्रिएटिव काम करते समय हम हमारे प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से भूल जाते हैं।
1: हाँ, और मुझे तो कभी कभी सिर्फ कमरे की सेटिंग बदल देने से भी अच्छा फील होने लगता है। टेबल इधर से उधर कर दी, प्लांट्स उधर कर दिए, बेड उधर लगा दिया, और लगता है जैसे सारा मूड भी थोड़ा थोड़ा बदल गया है।
0: कमरे की सेटिंग क्या, मैं तो मेरी प्लेलिस्ट को बदल दूं ना, तो ही मेरा मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, कि वही कमरा वही काम, लेकिन गाना बदलते ही मूड एकदम चेंज हो जाता है।
1: यही तो बात है, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है क्रिएटिविटी दिखाने का।
0: और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता।
1: हाँ।
0: आजकल हम हर काम का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन कुछ काम सिर्फ इसलिए भी होते हैं क्योंकि उन्हें करना हमें अच्छा लगता है।
1: हाँ, वही तो, हर हॉबी को करियर बनाना जरूरी नहीं होता दोस्तों।
0: ये बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल अगर कोई कहे कि मुझे स्केचिंग पसंद है, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इससे कमाओगे कितना तुम, और अगर कोई कहे कि बस शौक है, तो लोग ऐसे देखते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी, जैसे कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो।
1: हाँ, लेकिन अपनी पेंटिंग बनाने का सबसे पहला फ्री ऑर्डर जरूर देके जाते हैं वही।
0: ये जरूर है। वैसे दोस्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन हर चीज में नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए भी होती है क्योंकि वो हमें मुस्कुराने की एक वजह देते हैं।
1: और शायद इसी वजह से आजकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अपने लिए थोड़ा सा क्रिएटिव टाइम निकालना जरूरी भी है, और एक अच्छी आदत भी हो सकती है।
0: क्योंकि जब मन को अपनी बात कहने का कोई रास्ता मिल जाता है, तो कई बार वो हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसको भी कभी कभी छुट्टी की जरूरत होती है।
1: इसलिए अगर आपको गाना पसंद है गाइए, लिखना पसंद है लिखिए, फोटो खींचना पसंद है तो खींचिए, और अगर मेरी तरह बिना वजह गोल गोल गोले बनाना पसंद है तो वो भी कर लीजिए।
0: तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट अभी हो जाए, ये गाना सुनते हैं,
1: पर हाँ, गुनगुनाना मत भूलिएगा।

0: दोस्तों अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का, जहां रोज हम आपसे पूछते हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर्स से जुड़े दो प्रश्न। तो आज आपका पहला प्रश्न है,
1: दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है।
0: और आपका दूसरा प्रश्न है, किस शहर में स्थित सेंट्रल विस्ता क्षेत्र का नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया है। तो ये थे दोस्तों आपके दोनों प्रश्न, इनके जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। अब रुकते हैं कुछ संदेश के लिए।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
8: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
7: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
8: जन जन की वाणी, आकाशवाणी के माध्यम।

0: से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: प्रियंका, सच में समय का चक्र कितना अजीब है ना। हम अपनी घड़ी में जो टाइम जोन सेट करते हैं वह पूरे देश पर लागू होता है।
3: हाँ।
2: बिल्कुल वैसे ही जैसे कानून, चाहे हम दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं या बीकानेर में, सब जगह एक जैसा होता है।
3: बात तो ठीक है तुम्हारी गीता, लेकिन जरा सोचो, क्या कोई ऐसा कानून या घड़ी भी हो सकती है जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समान चलती हो?
2: पूरी दुनिया के लिए? वो कैसे मुमकिन है? आखिर हर देश का अपना एक संविधान है, अपनी अदालतें होती है। जैसे भारत का कानून अलग है और अमेरिका का कानून।
3: मुमकिन है गीता, और इसी वैश्विक कानून और व्यवस्था को याद करने के लिए आज का दिन तय है। आज 17 जुलाई है, जिसे पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाती है।
2: क्या बात है, यानी कि समय और सीमाओं की बात से तुम सीधे वैश्विक न्याय पर आ गई।
3: हाँ।
2: वैसे ये जो दिन है वो ऐसा कैसे है, इतना खास कैसे है?
3: देखो, आज के दिन यानी कि 17 जुलाई 1998 को इटली के खूबसूरत शहर रोम में दुनिया के कई देश जुटे थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक संधि पर दस्तखत किए जिसे रोम संधि कहा जाता है।
2: अच्छा अच्छा, तो इसी समझौते के तहत दुनिया की पहली और एकमात्र स्थायी अदालत बनी थी।
3: हाँ।
2: जिसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी कहते हैं।
3: एकदम ठीक, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के द हेग शहर के अंदर है। ये कोर्ट चोरी या दीवानी मुकदमों के लिए नहीं बल्कि नरसंहार और युद्ध अपराधों जैसे मानवता के खिलाफ होने वाले महा अपराधों पर सुनवाई करती है।
2: क्या बात है, लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी देश का राष्ट्रपति या फिर तानाशाह ये अपराध करे तो क्या ये कोर्ट उसे भी सजा दे सकती है?
3: यही तो इसकी सबसे बड़ी पावर है। इस कोर्ट के सामने कोई भी राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। पद का बहाना बनाकर कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। ये अदालत किसी भी देश के बड़े से बड़े नेता के खिलाफ भी सीधे अरेस्ट वारंट जारी कर सकती है।
2: क्या बात है, तब तो हमारा देश भारत भी इस शक्तिशाली कोर्ट का हिस्सा होगा।
3: यही पर छोटा सा ट्विस्ट है गीता, जो तुम्हें चौंका सकता है शायद। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी कि आईसीसी का सदस्य नहीं है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत का मानना था कि इस कोर्ट की कुछ नीतियां देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता में दखल दे सकती हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी इसके सदस्य नहीं हैं।
2: अच्छा, अमेरिका और चीन भी नहीं, ये तो बड़ी अलग बात हुई। वैसे प्रियंका, हम जो हर साल फरवरी में मनाते हैं वो दिन कौन सा है?
3: वो अलग है गीता, अक्सर लोग ये सोच के भ्रमित हो जाते हैं। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है, जिसका काम समाज से गरीबी और भेदभाव को मिटाना है। लेकिन आज यानी कि 17 जुलाई का दिन पूरी तरह से वैश्विक कानून और कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने के लिए समर्पित है। दोस्तों, अब जब बात देश के लोगों की सुरक्षा की हो रही है, तो हम हमारी भारतीय सेना जो दिन रात इसी के लिए काम कर रही है उसको कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए, पद्मश्री कैलाश खेर की आवाज में सुनते हैं भारतीय सेना को डेडिकेटेड ये गीत, भारतीय सेना।
4: नमस्कार, मैं हूँ कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारम्बार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: हेल्दी बीकाना।
2: गीता, पता है कल क्या हुआ?
3: क्या हुआ बताओ।
2: कल मैं मम्मी के साथ छत पर थी, पता है वो सारे गमले इधर उधर कर रही थी।
3: अरे क्यों भाई, पौधों ने कौन सी शरारत कर दी थी?
2: मैंने भी ये पूछा, मम्मी बोली पौधों ने शरारत नहीं, धूप ने अपनी जगह थोड़ी थोड़ी बदल ली है।
3: अच्छा,
2: तो इसलिए थोड़ा सा शिफ्ट कर रही हूँ जहाँ इन्हें अच्छी धूप मिले। उस समय तो मैंने भी कहा बस अच्छा ठीक है, ऐसा कह दिया, लेकिन बाद में सोचने लगी कि धूप की जगह बदलने का क्या मतलब हो सकता है।
3: और फिर तुम्हारी रिश्वत शुरू हो गई।
2: हाँ, पहले मैंने मम्मी से पूछा, फिर मोबाइल उठाकर थोड़ा सा सर्च किया, और पता है क्या, मुझे पता चला कि ये कोई नई बात नहीं थी, ये तो वही दक्षिणायन है जिसके बारे में हमने स्कूल में कभी पढ़ा था, बस अब याद

0: करने के लिए पढ़ा था, समझने के लिए नहीं।
1: अरे हाँ, हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होती थी उसी के साथ हमारा आधा सिलेबस भी हमारे दिमाग से खत्म।
0: नाम तो याद था, उत्तरायण दक्षिणायन, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि होता क्या है तो बस मुस्कुरा देते थे।
1: और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, सच कहूँ तो बहुत से लोग तो शायद आज भी ऐसा ही करते होंगे।
0: फिर मैंने थोड़ा और पढ़ा तो समझ आया कि दक्षिणायन का मतलब ये नहीं है कि सूरज सचमुच में दिशा बदलकर चलने लगता है।
1: हाँ, असल में सूरज नहीं बदलता, पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुक जाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसी वजह से हमें लगता है कि सूरज का रास्ता बदल रहा है। और ये जो चेंज है वो एक दिन में नोट नहीं होता, उसे धीरे धीरे फील करते हैं।
0: बिल्कुल सही, जैसे घर के छोटे बच्चे को रोज हम लोग देखते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पता चलता, लेकिन वही अगर कोई रिश्तेदार 6 महीने बाद आए तो सबसे पहले वो यही बात बोलेंगे कि अरे कितना बड़ा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कहा, यानी कि दोस्तों परिवर्तन, परिवर्तन हर दिन होता है, बस कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं आता। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, सब बदलाव अपने समय पर और सही समय पर ही होता है।
0: वैसे गीता, जब मैंने दक्षिणायन के बारे में थोड़ा और सर्च किया तब पता चला कि हमारी इंडियन ट्रेडिशन में भी इसका अपना एक अलग ही महत्व माना गया है।
1: बिल्कुल, दक्षिणायन को सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरह नहीं देखा गया बल्कि प्रकृति के बदलते साइकिल के रूप में भी इसे समझा गया है।
0: हाँ, और मुझे सबसे रोचक बात यह लगी कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी ऐप, सैटेलाइट या टेक्नोलॉजी के देखो प्रकृति को कितने ध्यान से ऑब्जर्व किया है।
1: ये तो बात सही है, खेती हो, मौसम हो या रोजमर्रा की जिंदगी, लोग प्रकृति के संकेतों को ध्यान में लेकर बहुत सी बातें अपने आप ही समझ लेते थे।
0: और कुछ लोग तो अब ऐसे भी हैं जो बाहर मौसम देखने के लिए भी खिड़की से बाहर देखने से पहले मोबाइल के अंदर ये देखते हैं। लेकिन एक चीज मुझे भी रियलाइज अब हुई है कि हमारे आसपास रोज ऐसी कितनी चीजें होती है जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, आखिर दोस्तों क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: इन छोटे छोटे सवालों से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, इसलिए अपने आसपास की नेचर को भी ऑब्जर्व किया कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो बिना कुछ बोले ही आपसे बहुत कुछ बोल देती है।
0: फिर तो गीता, आज तो स्टूडियो से निकलते हुए भी मैं सूरज को थोड़ा और ध्यान से ऑब्जर्व करूंगी।
1: हाँ, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, ये सोचना कि जो सूरज है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है वो अचानक से नहीं होगा।
0: बिल्कुल नहीं, अब तो समझ आ गया है कि प्रकृति के सबसे बड़े बदलाव भी धीरे धीरे होते हैं, और शायद ये उसकी सबसे खूबसूरत बात भी है।
1: वैसे इतनी बातें हमने सूरज की इस चक्कर में कहीं चांद ना नाराज हो जाए तो थोड़ी सिफारिश उनसे भी की जाए।

0: गीता, आज सुबह मेरा छोटा भाई टीवी पर एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। मैं वैसे तो बस 2 मिनट के लिए बैठी थी, लेकिन फिर खुद ही पूरी देखने लग गई।
1: ऐसा ही होता है, पहले लगता है कि इन चीजों को कौन ही देखता होगा, और 5 मिनट बाद हम खुद एक्सपर्ट बनकर बैठ जाते हैं वहाँ।
0: वही तो, लेकिन फिर पता है स्क्रीन पर ना एक मगरमच्छ आया। मैंने कहा अरे मगरमच्छ, और मेरा भाई तुरंत बोला दीदी ये मगरमच्छ नहीं घड़ियाल है।
1: आजकल के छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट हो गए हैं, करेक्शन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।
0: सच में, वैसे तो ज्यादा छोटा नहीं है वो। फिर उसने मुझे दोनों का फर्क भी समझाया। अच्छा? तब जाकर पता चला कि मैं इतने सालों से दोनों को एक ही समझ रही थी।
1: और सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे लगता है बहुत से लोग घड़ियाल और मगरमच्छ को एक ही मान लेते हैं। ये एक जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं।
0: हाँ, बाद में पापा ने भी यही समझाया। सबसे पहले तो मैंने उसकी लंबी और पतली थूथन देखी, तभी समझ आया कि ये मगरमच्छ जैसा सेम नहीं है।
1: और ये भी पता चला है कि जो घड़ियाल है वो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, और फिल्मों की तरह हर चीज पर हमला करने के लिए नहीं तत्पर होता है।
0: फिल्मों ने तो कई जानवरों की इमेज ही बदल दी है। वैसे अगर तुम सच में घड़ियाल देखना चाहती हो और अगर मौका मिले तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जा सकती हो।
1: हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी सुना है। वैसे चंबल का नाम आते ही ज्यादातर लोग बीहड़ और डाकुओं की कहानी याद करते हैं,
0: लेकिन आज वही चंबल देखो ना अपने साफ पानी और समुद्र जैव विविधता के लिए भी जाना जाती है।
1: मुझे तो ये जानकर अच्छा लगता है कि इतने दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए हमारे देश में खास संरक्षण भी किया जा रहा है।
0: चंबल नदी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में संरक्षित है, जहां घड़ियालों के साथ साथ डॉल्फिन, कछुए और कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं।
1: यानी अगर हम किसी जगह को सिर्फ उसके पुराने इतिहास से पहचानेंगे तो उसकी आज की खूबसूरती शायद कभी देखी नहीं पाएंगे।
0: सही कहा, चंबल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
1: बिल्कुल, एक समय जिसकी पहचान कुछ और थी, आज वही प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण की मिसाल बन रही है।
0: और मुझे तो लगता है ऐसी बातें हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की हर प्रजाति का अपना महत्व है, चाहे वो कितनी भी अलग क्यों ना हो।
1: और ये सिर्फ घड़ियाल को बचाने की बात नहीं है दोस्तों, जब नदी सुरक्षित रहती है तो उसके साथ रहने वाले दूसरे जीव भी सुरक्षित रहते हैं।
0: यानी अगर एक नदी स्वस्थ है

0: समझिए उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम भी स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। इसलिए दोस्तों, नदियों को साफ रखना और वन्य जीवों की रक्षा करना सिर्फ किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी भी है।
0: हाँ।
1: तो प्रियंका, अब तो घड़ियाल और मगरमच्छ वाला कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ना?
0: बिल्कुल, अब तो मैं पहचान लूंगी। लेकिन आज एक बात समझ आ गई कि हर बार जो दिखता है वो वैसा होता नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी अपनी नजरें भी थोड़ी दगाबाज हो ही जाती है।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे। अब वक्त है उन दोनों प्रश्नों के जवाब जानने का। पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा था
1: कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है।
0: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप दोस्तों, इसका सही जवाब है उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था
1: कि किस शहर में

0: क्षेत्र रखा गया है। और अब वक्त है दोस्तों रोजगार सूचना का।
1: तो दोस्तों RRB यानी कि रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
0: दोस्तों सभी RRB को मिलाकर कुल पदों की संख्या 199 है
1: और इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। और अधिक जानकारी जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया सहित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
0: और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 14 अगस्त है, तो समय पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें, आवेदन करें और तैयारी में लग जाएं। चलिए अब सुनते हैं ये अगला गीत।

0: प्रियंका ये हाँ? कपड़ों पर क्या लगा रखा है तुमने?
1: अरे वो स्टूडियो आ रही थी ना, मैं स्कूटी पर आ रही थी तो एक जगह थोड़ा सा पानी इकट्ठा था और सामने से बाइक आ रही थी, उसने पास में से गाड़ी थोड़ा सा तेज निकाली ना तो वो पानी उछल गया तो कपड़ों पर लग गया।
2: कोई बात नहीं, नया डिजाइन बन गया। लेकिन एक बात बताओ, बारिश तो अभी आई ही नहीं और कपड़ों पर डिजाइन तुमने पहले लेकर आ गया।
1: अरे पूछो ही मत, और सफेद कपड़े पहन रखे हो तो समझ लो उस दिन की तो फैशन प्लानिंग खत्म हो गई। लेकिन इस बार बारिश रह कहाँ गई है, मौसम तो रोज ही बन जाता है लेकिन बारिश तो आई नहीं रही।
2: यही तो बात है कि बारिश के बाद पानी बनने की शिकायत भी हम खूब करते हैं और अगर यही बारिश कई दिनों तक आए नहीं तो हम वेट करते रहते हैं।
1: वेट तो होगा ही ना, कहीं पर ज्यादा बारिश परेशानी भी बन जाती है और कहीं कम बारिश चिंता।
2: हाँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना प्रियंका।
1: क्या?
2: कि बारिश का इंतजार शायद भारत में ही सबसे ज्यादा होता है।
1: हाँ, अब देखो ना, न्यूज चैनल खोल लो कोई भी, मॉनसून कहाँ पहुंचा, कब पहुंचेगा, इस बार कैसा रहेगा, हर जगह बस यही चर्चा होती रहती है।
2: बिल्कुल, क्योंकि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इससे जुड़ी होती है।
1: हाँ।
2: अब हमारे लिए बारिश का मतलब कभी ट्रैफिक, कभी कीचड़, कभी रेत पहुंचना हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए यही बारिश उम्मीद लेकर आती है। इसलिए सिर्फ मौसम विभाग ही नहीं, वे भी इनका इंतजार करते हैं।

0: मजेदार बात तो ये है कि बारिश तो दुनिया के कई देशों में होती है, लेकिन भारत का मानसून फिर भी थोड़ा अलग माना जाता है।
1: अलग माना जाता है गीता, वो कैसे?
0: क्योंकि यहाँ बारिश सिर्फ बादलों की वजह से नहीं होती, हवाओं के पूरे सफर से जुड़ी है। हिंद महासागर और अरब सागर की तरफ से जो नमी भरी हवाएं आती है, हाँ, तो पूरे देश के मौसम का रंग बदल देती है।
1: और तभी तो गीता केरल में मॉनसून के एंट्री की खबर हर साल न्यूज में सबसे पहले दिखाई देने जाने लगती है,
0: क्योंकि वहीं से मानसून की शुरुआत मानी जाती है। हाँ। और फिर धीरे धीरे ये देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है।
1: और देखो, हर जगह इसका असर भी एक जैसा नहीं होता। कहीं पर जरूरत से ज्यादा बारिश बाढ़ की वजह बन जाती है, तो कहीं पर कम बारिश सूखे की चिंता बढ़ा देती है।
0: इसीलिए जब अच्छी बारिश होती है तो उसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं, हमारी थाली तक भी पहुंचता है।
1: और इसीलिए संतुलित मानसून बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और शायद यही वजह है कि पहली बारिश की खुशबू, देखो नाम सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है, सुनते ही फेस पे एक स्माइल जैसी आ जाती है ना।
0: बिल्कुल। और उसमें सिर्फ मिट्टी की महक नहीं होती, उसमें एक उम्मीद भी होती है। लेकिन इस खुशबू के साथ अगर हम सच कहें तो बारिश का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी हमें निभानी होगी। पानी की बर्बादी नहीं करने और जहां तक हो सके वर्षा जल संरक्षण जैसी छोटी छोटी कोशिशों को अपना कर।
1: ये जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी गीता, क्योंकि पानी को संभालना हमारे तो हाथ में है।
0: बिल्कुल।
1: और उम्मीद करते हैं कि आप बारिश का मजा ले सकें तो इस बार मानसून भी मुस्कुराएगा।

0: और इसी मौसम के साथ दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
1: तो दोस्तों मिलेंगे आपसे कल फिर इसी समय और इसी कार्यक्रम में।
0: तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ प्रियंका सोनी
1: और मैं हूँ गीता सोनी।
0: हम दोनों करते हैं आप सभी को नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुत कर रही थी प्रियंका सोनी और गीता सोनी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे हम अपने जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे कार्यक्रम गुलिस्ता। उर्दू कार्यक्रम गुलिस्ता आप सुनिएगा रात 10 बजे से 10:30 बजे तक।

रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं एक परिचर्चा। विषय रहेगा नई शिक्षा नीति 2020। सहभागिता होगी श्री नवदीप सिंह बैंस और श्री बजरंग सिंह राठौड़। परिचर्चा का संचालन करेंगे श्री प्रशांत बिस्सा। प्रस्तुति सहायक होंगी श्रीमती बरखा थानवी व्यास। प्रस्तुति होगी श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन होगा श्री अमित सिंह का।

से प्रस्तुत करेंगे राम स्वरूप बिश्नोई और राकेश कुमार जोशी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा मरुस्थल का मोती बाजरा विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी पालतू पशु के काट लेने पर क्या करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा, गोचर ओरण वन भूमि संरक्षण, इन विषयों पर चर्चा होगी और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:05 पर और उसके बाद 8 बजे और रात 9:15 पर।

0: ये थी सभा में शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री

वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सके। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म के कुछ गीत।

0: साथियों, ये आवाज थी महेंद्र कपूर की। ये फिल्म हमराज है। गीत सहल लुधियानवी का लिखा हुआ है और संगीत है रवि का। और साथ ही आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, इसी फिल्म के लिए, इसी गीत के लिए महेंद्र कपूर को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार भी मिला था। और इस गीत, इस फिल्म का जो निर्माण है वो 1967 में हुआ था। ऐसी छोटी छोटी जानकारी आगे भी
1: ना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

साथियों, हमराज फिल्म का जो प्रदर्शन हुआ वो 1967 में हुआ था और ये बीआर चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक रहस्यमय रोमांचक हिंदी फिल्म है। और इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार है वो है सुनील दत्त, राजकुमार, विमी, मुमताज और बलराज साहनी। फिल्म का संगीत रवि का है और गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला एक गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से फिल्म संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हमराज फिल्म के कुछ गीत। साथियों, हमराज फिल्म को पुरस्कार भी अनेक मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1968 मिला था। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार एमएन मल्होत्रा जी को मिला और राष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ नाट्य रूपक फिल्म पुरस्कार बी आर चोपड़ा जी को मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार एमएन मल्होत्रा और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार महेंद्र कपूर को मिला नीले गगन के तले गीत के लिए। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: महेंद्र कपूर के गाए हमराज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 होने को है। अब आप थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को आज रवाना किया। उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का परिवहन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अब तक जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही ये सुविधा उपलब्ध है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जबकि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन 2 या 3 डिब्बों की होती है। इससे भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बनी 3200 हॉर्स पावर वाली इस ट्रेन को रेलवे इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत कहा।
2: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ग्रीन रेल की प्रौद्योगिकी को

0: पर्यावरण अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में डीजल की जरूरत नहीं होती है।
1: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क क्षेत्र की करीब 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री मोदी ने देशभर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोनेसर शामिल है। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति और रुपया स्थिर और सामान्य बना हुआ है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में श्री मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का सेवा निर्यात, रिकॉर्ड विदेशी निवेश, एफडीआई और नए व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में बाधाओं से महंगाई का दबाव है। अनिश्चितता की इस स्थिति में भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत बना हुआ है।
3: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एनपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों आशार्थियों का चयन किया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रोजगार सहायता शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने की बात कही। श्री राठौड़ ने बताया कि सरकार अब तक 24 रोजगार मेले आयोजित कर चुकी है।
4: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और यह आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज भरतपुर के भुसावर में नए कृषि महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बागड़े ने विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज नई दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, किंजरापू राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाने का कार्यक्रम है। सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: राज्य सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत बीते 3 महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने बताया कि सरकार अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में 24 अस्पतालों पर कार्रवाई कर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इन अस्पतालों के ऑडिट में कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ऑडिट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर सहित कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए साइबर ठगों की गतिविधियों का पता लगाने के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, सिम कार्ड्स और अवैध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। भिवाड़ी में कल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। ये कार्रवाई भिवाड़ी SHO सचिन शर्मा की अगुवाई में की गई।
1: ये जो गिरोह है इसमें अभी तक इसमें जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिन का ये आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को बिना डर के काम करने का अधिकार है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार, संस्थानों और नियोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। आज दहेज प्रतिषेध दिवस है। लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दहेज यानी शादी के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या कीमती वस्तु मांगना एक सामाजिक कुरीति होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्राओं को इस सामाजिक कुरीति के नुकसान के बारे में बताया गया और दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भारत टैक्स 2026 का आज नई दिल्ली में समापन हुआ। 4 दिन के इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, नवाचार और निवेश को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इसमें 11,000 से ज्यादा खरीदारों ने भाग लिया जिनमें 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने RGHS में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण राजसमंद में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर जिले में 402 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौचौकी पाल पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर

से आयोजित कार्यक्रम में 2390 योग साधकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्दी घाटी की ऐतिहासिक धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाग परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचिंद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्ता कशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल

0: महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाग परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचिंद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्ता कशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाव किशन राव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल दुर्ग परिसर में बनी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग का पैदल ही अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और स्थापत्य कला को नजदीक से देखा। राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की, इसके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राजसमंद पुलिस की ओर से देवगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया, मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजसमंद के भीम उपखंड में डिजिटल प्रहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। साइबर पुलिस ने युवाओं को फर्जी ऐप, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। नाथद्वारा में प्रज्ञानम टेक्नोफेस्ट 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की संयुक्त पहल से जिले के 100 सरकारी स्कूलों में प्रगति और स्टीम लैब स्थापित होंगी। इन लैबों में विद्यार्थियों को एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन के कामों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस जवानों ने अपने सेवा संबंधी आवास, स्वास्थ्य और ड्यूटी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस द्वार का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। जिले में निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजानाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। व्रतधारी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जल कलश अर्पित किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। समाचार। भारत हाइड्रोजन और रेल चलावन वालों दुनिया रो 5वो देश बन्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें खुदरेपाण उबो भारत बनावन और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो, पश्चिम एशिया में तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार RGHS माई माली गड़बड़ियां करण रा आरोप माई लाडला 3 महीना माई 51 अस्पतालां ने योजनाओं हटाया। और राजस्थान पुलिस भिवाड़ियों साइबर अपराधियां रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ किनो। समाचारों से आगे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन चालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने आज हरियाणा में जींद रवाना की। आ गाड़ी जींद सोनीपत बीच चलाई जा रही है। ये मौके श्री मोदी 12,470 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली नेशनल हाईवे परियोजना वाली शुरुआत की और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 12 साल में रेलवे

0: मां खास बदलाव करी छिया। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी री रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी ऊंचा लेला। प्रधानमंत्री कहो कि मौजूदा दौर में दुनिया रा केवल 3-4 देशा के नहीं हाइड्रोजन ट्रेन चलावन रोबोटो है। इस आगे भारत हाइड्रोजन रेल चलावन वालों 5वो देश बन गयो है। हाल ताई जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका में ही सुबितो है। 10 डिब्बों वाली इन रेलगाड़ी में 2600 मुसाफिर सफर कर सके है। दूजा देशों में हाइड्रोजन चलाई जावन वाली रेलगाड़ियां में 2 या 3 डिब्बा फे है। प्रधानमंत्री कहो के 3200 हॉर्स पावर मोटा वाली भारत री हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया री सब ताकतवर और हाइड्रोजन चलने वाली लंबी रेलगाड़ियां में शामिल है।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं
0: हैं। इनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाइड्रोजन और चलन वाले नमो ग्रीन रेलगाड़ी री शुरुआत में देश री तकनीकी बरकत में ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। श्री वैष्णव कहो कि आ गाड़ी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इनमें डीजल की जरूरत नहीं है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, भलाई लिखाई और सड़क हलकाओं जुड़ी विकास रही करीब 4700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इन पाछे श्री मोदी देश भर में और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशनों रो पंजाब राज जालंधर कैंटो वर्चुअल तरीका उद्घाटन की। आमाय राज्य रा जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसरी शामिल है। आम टेसना माथे राखी जा कार्यक्रम माई वठेरा जनता रा नुमाइंदा, अहलकार और मोटी तादाद माई लोग भेड़ा फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नागौर जिला रा गोटन रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम माई शामिल फिया। ई मौके श्री शर्मा कहो कि ओ विकसित भारत बनावन रो संकल्प साचो करण री दिशा माई खास कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है और संकल्प के साथ गति देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो है कि मध्य पूर्व में उपजी तनातनी रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था मजबूत बनी है। डीडी न्यूज चैनल सागे बातचीत करता था कांशी मल्होत्रा कहो कि भारत कानियों दिसावर माए भात भात री सेवा मुहैया करावनो, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और नुआ कारोबारी करार माली व्यवस्था ने मजबूत बना रहा है। वह कहो कि अनिश्चितता रा हालात माई भारत सगला हल्का माई मजबूत बनियोड़ो है।
4: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग री ओर आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाई चियो। इन में 50-32 कंपनियां न्यारा न्यारा ओहदा सारू उम्मीदवारों ने नौकरी रा प्रस्ताव दीना। इ मौके

0: ऑनलाइन प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला आ हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला इन कार्यक्रम रे 136वीं कड़ी फैला इसारु आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ये विचार भेजा जा सके है आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो भारत हाइड्रोजन और रेल चलावन वालों दुनिया रो पांचवो देश बनियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खुदरे पान उबो भारत बनावण और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो पश्चिम एशिया में तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत राज्य सरकार आरजीएचएस में माली गड़बड़ियां करण रा आरोप में लाडला तीन महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया और राजस्थान पुलिस भुवाड़ी में साइबर अपराधियों रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडो फोड़ कीनो इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो भरो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला नमस्कार
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत

0: किसान भैया, ग्रामीण भाई भैया, भाई बहना राम राम। और रामस्वरूप भाई आपने भी राम राम।
1: राकेश भाई जद बाजे माथे आपना कार्यक्रम री निशानी बाजी नी जिन कई तो कोड कर बाजे नेड़े बैठ गया कई आप मोबाइल माथे बड़े चलाउन लाग गया। पर जरूरत है कि आप अथे इसी करा कि अलगा नया जहर होता रह कई तो भेजे करे कि भाई मैं नया चीज चौखी लागी मारी दाए आई कितनी चौखी बात है कि आपने जो को प्रेम है नी आप बतला रहा अथे कार्यक्रम छेकड़ देते और तई सागे रहा।
0: बिल्कुल बिल्कुल आप ग्रामीण जगत कार्यक्रम है नी वो आपने आ समझ लो बीकानेर एड़े गेड़े तो सुनी जाइए लेकिन दूर दूर सो अपन कागज जद आवे नी जद अपन था पड़े कि आपने ग्रामीण जगत कार्यक्रम उड़ीक जिका है ये पूरे संसार में लोग रखे
1: कई कह थर जो का मान लो कोई पंजाब हरियाणा बैठा तो वो के बागड़ी में जो को थर प्रोग्राम हुए नी इन राजस्थान इन तो के मान तो बढ़िया लागे।
0: सही बात है
1: अथई थे करो नी राकेश भाई इनके एक तो बेड़प है भाईचारो है मिठास है नी
0: मिठास
1: मरु भोमरी मरुस्थल री आठ हड्डी है जी
0: और मिठास तो देखो अठे निपजे नी जी को बाजरो बिल्कुल सुनेरा जिका धोरा है और इमें जद आपने मानसून दी बारिश री जद बूंद गिरे नी तो मोती निपजे और ओ मोती है बाजरो गोल मटोल और देसी बाजरे जब रोटी खावा नी आपा तो बिरो कहनो ही काई।
1: देखो एक तो राकेश भाई तब तक तावड़े में बलती लू बाजे एक अपनो जो को सहज शुष्क जलवायु रे माई नहीं रेतीली माटी रे माई निपटन वाले बाजरे अथई पड़ा ही नहीं जन मारे मां किया करता कि थन बात दाय आईर हुनला बिन चोखी लागी बाजरी री रोटी री मैं ता चाहे आधी रोटी वे नी चाहे बगड़ो एक ही वे तो भी बिरी चार पांच फलका जीती है। कुकर गए छाछ छाई माई राबड़ी फल से ताई समझ गया फलसो राबड़ी ताकत फल से ताई दलियो दोपहर ताई और बाजरी रोटी आथन ताई जे बाजरी की आधी रोटी थे दही रहा गया जीम लेनी तो सिंह जाता ही था दूजी चीज जीम नहीं की जरूरत को
0: नहीं आ सच्ची बात है
1: सच्ची के है कि थे तो बे छापे में बांचे आ गई में मैग्नीशियम वेरी में फाइबर वेर और अल्ट खातर
0: वेर हाँ हाँ बिल्कुल इन जिका पोषक तत्व है नी भी में प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है फाइबर है और थे जिया को

0: आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, तो ए सगला कहीं करे आपने पाचन शक्ति जी के ने पेट बिन सांतरी करे। और आज का बार चल रही होड़ी नहीं वो शुगर रोग डायबिटीज के है कहीं तो डायबिटीज खातर बाजरो तो एक तरह से दवाई रो काम करे। शरीर में खून की कमी हुए बिन एनीमिया क्या करे तो बा भी कमी इस दूर हो हड्डियां मजबूत बने और हार्ट खतर भी घनी चोखी माने।
1: आप बात राकेश भाई हूं क्यों नालो हो मैं राकेश कटी भूल जी तो वो कहीं ब्लड प्रेशर हुआ कहीं
0: बीपी
1: भी ना बड़े ठीक करे
0: सही बात है।
1: देखो अब कई बार कहीं है अपन की सहज उपलब्ध चीज हुए नहीं बेचोखी को लागे
0: सच्ची बात
1: अलग आवे कोई दूसरा लोग बता दे पश्चिम की बनावड़ी चीजें बा माथे लारे दौड़ रिया पर बडेरा अपना खींचड़ो कूटर करता बिहिन जाऊ तीजन बाहूकली बाजती घर में अनाज दिवस मनाई
0: बिल्कुल जागरूक तो लोग ने करी है लेकिन आजकल देखा ना कई बार गाँव में भी शहरारी चीजा पहुंच गई नी गाँव में कोई मैगी खाऊ तो टाबर जिद करे नी जन थोड़ी टेंशन हुए।
1: अब देखो बडेरा की बात माननी पड़ी और बारह महीने एक बात मोटी है कि थे हनी बाजरे जगह सिटिया मान लो लागूड़ा है तो बिन मोरण काची काची जीमो मुंह में जाने कोई अमृत शोक बनियो है
0: बिल्कुल
1: बाजरे की कूटवा राबड़ी जीमुड़ी है थारी
0: हाँ जिमुड़ी है
1: कहीं बात करो फूटरी बात है थे जिमुड़ी है टाबरन ऐसे संस्कार दे कि आपने अठेरी बनोड़ी चीज चाहे वो मोती मरुस्थल हुए चाहे वो मोट हुए चाहे आपने हाथी मोटी तो ओड कहीं बाजरी रागे
0: बिल्कुल।
1: एक बात और है राकेश भाई बाजरी बोलनी कितनी सरल है कम पानी में हुए
0: बिल्कुल हुए
1: आपने मरुस्थली रेत में हो जाए
0: बिल्कुल।
1: और सागे एक बात और है कि बाजरी नीचे बाजरी का सिटिया तो ऊंचा है नीचे थे मोट बो सको हो तिल बो सको हो मूंग बो सको कि तो भेड़ा प्यार हो यानी चार चार फसल आप सागे ले सको। और एक बात और कह दू थे होना तो बाजरी एक एडी फसल है बार टेम है जके रमाने कोई थार वो पेस्टिसाइड को कोई जहर
0: बिल्कुल सच्ची बात
1: बाकी सगला में थे कि इनकी देवन लाग गया सफरे करन लाग गया बाजरी में जे कोई बेड़प नहीं
0: और बाजरी में की चीजें भी को नहीं
1: चीजें भी को
0: खाली दोमट मिट्टी चीज है
1: 80 दिन
0: कम पानी चीज है कम पानी चीज
1: कम पानी चीज
0: और जद बाजरी सुदाना निकले नहीं सिटे तो एकदम मोती बरका हुआ है
1: मोती बरका
0: और पौष्टिकता में दुनिया में ये बराबर कोई दाना नहीं है।
1: अब जब को लारे बच्चे सिटिया तोड़ लिया सिटिया तोड़न दोबारे बड़े एकर हिलो कर लो
0: चाहिए
1: पछे थे बा कड़बी बाड़ लो तो कड़बी पशुआ रे खातर पौष्टिक आहार है। मान लो भगवान नहीं करे मैं मोड़ो हुए तो वो जो को खाखिलियो बच्चो है नी हिटिया नहीं लग गया तो खाखिलियो थे पशुआ रे मायर ने जो को गुणवत्ता रे काम करे
0: बिल्कुल
1: पशु राखे जो कंठा है कि बा कड़बी बा बीरी डोका थे क्यों मन थे डोका नीरो समझ गया कहीं क्यों डोका नीर ने मतलब है कि उबे खेत में जब हिटिया नहीं लागे तो पशुआ ने बाढ़ देर थाने कोई बात ने मैं भेड़प देर ये कहीं क्यों मैं डपोड़ बनाऊ नी बिन के डोका नीर है डोका सिर्फ किरा हुआ
0: बाजरी
1: अब थे के
0: लेकिन
1: के?
0: थे तो ए बातें करो देसी और हूं करूं कि बाजरी रे जिका आटो सु है नहीं आजकल शहरा में देखो
1: हां बिस्कुट
0: बन गया है
1: चीजें
0: तो टाबर ने किसी ने किसी बाने सु बाजरी की चीजा खड़ावानी तो पौष्टिकता जानी चाहिए
1: आपने जिद आना चाहिए
0: हां जिद को नहीं करना कि टाबर ने आप बाजरी बाजरी रूप में खड़ावा
1: राबड़ी रूप में खड़ावा छापे में बांचो के भी बाजरी रे इतना व्यंजन बन रहा है
0: आजकल जिका प्रयोग कर परो जिका कया रहनी की भाई रसोई रा कारीगर होया करे नी जाई है आजकल आधुनिकता में बिन भी ए पौष्टिक चीजा बन रही है बेबी स्वास्थ्य खातर बहुत बढ़िया है
1: बिल्कुल।
0: तो देखो बातें तो रही और
1: छोड़ो करी और माटी जरूरी करी रब मन यहां लागे कोई माटी जरूरी गीत
0: बिल्कुल गीतड़ का पारंपरिक गीत है करीम खान खेजड़लार गायोड़ है सुना
1: लो सर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी।

0: यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं, उनके लिए खतरा और भी ज्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है।
1: राकेश भाई, संदेश कई बार अपन ऐसी बात सीखा दे कि भी अपने भी अपने जलवायु प्रति अपने आस पास प्रति सजग रहना चाहिए कि संवेदनशील
2: रहना चाहिए और संवेदनशील रहना नहीं जब आप कुछ नयो कर सका।
1: बिल्कुल।
2: और आपनो पर्यावरण बार देखा है पूरी दुनिया में, आपनो पर्यावरण ने लेप रोर बांध बांध रही जिसकी चिंता वहां है
1: बढ़ती
2: जा रही है।
1: पण जरूरत है कि अपन जीवन मत दया करनी है, पेड़ पौधा ने बचा रखना है। पण राकेश भाई, कई बार घरे आप कोई जीव रखा जहा कई भाई कुतिया पाल रखे, कई मिनड़िया पाले, कई बांदरिया पाले घर में,
2: लेकिन किसान तो आपरे घर में पालतू पशु पाले,
1: पालतू पशु पाले पर खेतरी रुखाड़ी खातर कुतियो तो जरूर रखे।
2: नहीं, सही बात है।
1: मिनड़िया यही खातर रखे कि भाई ये छोटा जगह ऊंदरा वे फसल ने नुकसान कर दे, जगह घर में मिनड़िया की हुरम हुई जन बे ऊंदरा आवे कोनी। पण वो आपस में प्रकृति रो संतुलन है, आप तो इनकी रोक सका।
2: ठेकेणो कहीं चाहो बताओ।
1: हूं कहणो या चाहूं कि कदी कदी बे जका पालतू पशु है नी, दूजी चीज आप काम रही तो खावे, पण कोई नहीं टाबर ने खा जाए, बुढ़े बुढ़े रन गले में कुत्तियो खा गए।
2: बटको तो अपने पालतू पशु भी कर, ऊंट भी कर,
1: भी पालतू है, वो उड़ सके, कुत्तियो खा जाए, मिनड़ी खा जाए, दूजा जगह पालतू जानवर है बे खावे जन।
2: लेकिन यार स्वभाव शांत हुए गाय रो भैंस रो ऊंट रो
1: छेड़े जे नहीं, कोई परेशान करे जन वो आप रो हमलो तो पाछो करे या तुम।
2: लेकिन आप देखा भाई गली में कुत्ता है या घर रहा कोई पालतू कुत्तो है मिनडी है,
1: हाँ, कोई इड़किया उड़ो जा तो जो चालर खाजे,
2: बिल्कुल खावे जन साल चेत तो रहना जरूरी है।
1: अब डांग लिए तो फिर को सका नहीं, पर खावे जन खाई करना थे कि बनी जुड़ा हो और कोई प्राथमिक उपचार बताओ।
2: नहीं, बनी जुड़ा तो अपना भाई बंधु भी है जिसका सुन रही है।
1: नहीं थे बाप,
2: अपन ध्यान है
1: ऐसी बाप विज्ञान पडोड़ी है।
2: नहीं विज्ञान पडोड़ी है, लेकिन विज्ञान अटकाम को नहीं आवे
1: तो
2: अठ तो यह है कि अपन देसी जिसका इलाज है नहीं गाँव रहा ब्यापन ध्यान है
1: सकता
2: है।
1: इलाज तो मार तो बड़े रखे हूं ताकि कुत्तियों खे जन मिर्च डाल दो के
2: तो मेरे पीछे विज्ञानी कोई ना कोई कारण
1: तो कारण तो हो।
2: लेकिन डॉक्टर साहब जी का कहा करे नहीं प्राथमिक चिकित्सा जी की अपन
1: बताओ
2: के जब भी कोई कुत्तो या बिल्ली या कोई हिंसक जानवर अपने खा ले नहीं तो सबसे पहले तो अपने घाव देखना चाहिए घाव केड़ो है। यदि गेरो घाव है खून आ रही है तो तुरंत आपने बिना सोचे डॉक्टर साहब को जाना है।
1: अच्छा,
2: कभी टांका लगाना पड़ सके, हाथों हाथ कोई टीको लगाना पड़ सके। और अपन ये अलग है कि भी घाव गेरो को नहीं कोई जरूरतियों बटोड़ है तो भी घाव ने आप चोखी तरह पानी सो धोवा 10-15 मिनट तक
1: तेज पानी रे बहा जो जहर है या वो
2: हाँ जी का जीवाणु है कोई रेबी जीवाणु हो रहे बेबी सो काफी और भी बात
1: कपड़े
2: एंटीसेप्टिक कोई क्रीम हुए घर में
1: लगा ला।
2: और एक बात जरूर ध्यान रखा कि ठेक जी हाँ क्यों नहीं कि गांव में थे आप मिर्चियां लगा दी कोई तेल लगा दियो कोई हल्दी लगा दी कोई चूनो लगा दियो वो नहीं लगाना चीज है। डॉक्टर साहब कहवे विज्ञान कहवे और गांव ने कदी भी कस पर नहीं बांधनो
1: थोड़ा
2: ढीलो रखना चीज है और जहां तक संभव हो तुरंत आपने डॉक्टर साहब
1: मिलना चाहिए। अब के अंग पहली अड़बो डर बढ़ बैठा है, पहले के हम तो कोई गंडे खान तो जन के हम ताकि हुंडी माते बेचब दे 15 टीका ला। अब तो बात है डरने की जरूरत है,
2: वो तो कोर्स अब 3 या 4 टीका हो गया।
1: हाँ, रेबीज जो एंटी रेबीज है
2: कोर्स लेना जरूरी है। कुत्तो चाहे हिंदू है चाहे नहीं है, पागल कुत्तो चाहे जानवर कोई है या नहीं है, अपन ने कोर्स पूरा लेना चाहिए।

0: डॉक्टर साहब ने पूछ
1: कहीं भाई आलस कर देगा कौन से हेयर निकाल लाई टेम और ग्लोरी में जाऊं और बड़े
0: बीड़ आलस करे जो नुकसान में रह सके।
1: कई बार अपन राकेश भाई होना कई बतावे कि अब बार थे इलाज नहीं ले तो कई साल पछ नहीं आवे जने का बिजली चमके जने बा आदमी ने जके न रे बिजरा कोई
0: क्या करे
1: केवे के
0: तकलीफ दो रा सके हिड़का ऊपर सके
1: हिड़का वाली बात में कई जगह हुन ली। और एक और बात मने याद आई के थे जे इसा कोई कुतिया मिनडी रे काटने उ चपेट में आ गया तो एंटी रेबीज रो तो ले ओ पूरो कोर्स और एक जगह थे राखो नहीं घर में मोटो कुतियो थे राख्यो है बाड़ दूरे भी आजकल डॉक्टर साहब कहीं करे कि बे एंटी रेबीज रा इंजेक्शन लगा दे जके वो काटे तो नेक नहीं हुए
0: या पा पशु रो टीकाकरण करवानी
1: जी भी
0: ये पालतू पशु जी को सोरे रूप में या रखा पा चाहे कुत्तो हो चाहे मिनडी हो फिर अपने टीकाकरण करना चाहिए डॉक्टर साहब को मिल पर
1: बे बच्चे बे आप खुद बीमारियों बच जाए बे जे अपन काटे तो अपन रेबीज नहीं वे एंटी रेबीज
0: मैं काटे कौन लेकिन कई बार आप अभी ऐसा के खेला नहीं तो नाखून रे रोटियां लग सके अपन
1: हां उही ठिठोली करतो ही मुंह मारे तो
0: भी खतर भी
1: लगा लारो कोई लाग जे तो जे एक आदमी ने पांच सात साल पहले कोई नहीं लागी है तो टिटनेस रोटी को जरूर
0: बिल्कुल लगाना
1: बात मन की याद आई घटी
0: बात
1: सच्ची
0: बात है
1: कि भाई थारे कोई थोड़ी लागी लोग ये हड़क मत पड़ गया तो ही थारे कोई जरूर ठीक लाग गया तो ठीक हो
0: खून निकल गयो नहीं तो टिटनेस
1: विज्ञान
0: पर एक और है कोई पशु मान लो कि नहीं खायो है तो भी पर निगरानी जरूर रखा 10-15 दिन तक कि वो पशु जी को है जीव तो है या मर गयो और हिड़काव तो ये है कि देखो गर्मी के मौसम में या कि नहीं भी हो सके यदि कोई हिड़केड़ो कुत्तो गाय ने खा गयो तो गाय में हिड़काव ऊपर जैसे तो ध्यान तो अपन चारू खान निरगड़ो
1: खा भी पड़ जी मेरी पूछड़ी नीचे करोड़ी हुई लार पड़ी नस नीचे करोड़ी फिर
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लार में नहीं बिन कोई डॉक्टर साहब इलाज कराना जीवा मत दया रखनी खुद सुरक्षित रहना और आरी निगाह रखनी अब थे निगाह रखो कोनी कि कार्यक्रम गुरदस्त रो है कि कोई गीतक में होना हो जके लोक लाज हुए कोई बेड़ भाईचारे की बात हुए कोई बुलावन हुए
0: सुना दा लो पारंपरिक गीत है कालू राम प्रजापति गायोड़ो है
1: हाँ
0: वही वही वही
1: लगो
0: ये सुनो

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी

0: है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो रामसुर भाई देखो कालू राम प्रजापति रो गीतरलो आप सुनियो पारंपरिक और अब आप बात करा आपने फसल री
3: जकी बोड़ी है बेरी
2: बोड़ी है जिकेरी कर
3: देखो थे मन लागे थे करे पछे गीतरलो लाए और लागे लागे जेठ साड कमर ते जाए। अब अटकावत है कि जेठ बाजरी बागान मिलिया करे और जेठ में जो बाजरो चोखो बौड़ है जहाँ पे कार्यक्रम में शुरुआत में बात करी पर कई बार राकेश भाई में टाइम पर कौन बरसे
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: का आंधी आज है
2: प्राकृतिक
3: हाँ, बाढ़ आज है बेमौसम बारिश आज है का बे गड़ा पड़ जाए
2: सही बात है
3: एर, का कातरो अबार कोई भाई बतावे हो कि थोड़ी थोड़ी बाजरी उगी यार कातरो हो गयो
2: बिल्कुल
3: जना अब करे कहीं का बुनंग कोई टिड्डी आलो
2: दल आ गयो
3: इसी जद कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए कोई आदमी री बनावड़ी आगजनी हो जाए जना अपने फसल में वह नुकसान
2: नुकसान हो
3: अब थे मारवेश्वर हम जो लार होना ला भी हम जाए कि अपन बात करनी चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना री
2: बिल्कुल साची बात है
3: जका किसान इन योजना अब तो कोई है ही कोनी जो कोई योजना और फायदा नहीं ले वे पर कई किसान उन बुने ग्वाड में मिले का कई लोरी में बैठा मिले के मार तो बे दो दो हजार ही प्यावे नी केंद्रों केंद्रों मतलब तो समझ गया भारत सरकार हूँ
2: बिल्कुल
3: बे अब की आने बंद को करो गया अब बंद को करो गया एक लारा भाई हूं तो कोई भी नब्बे रुपया भजन आलो हूं कोनी पर मैं भी भाई ने हम जायो कि थारे कट्ठे कोई कागजी में कमी रही है ली थे कोई जमाबंदी है का कोई थारी बा कहीं बैठ बैठ पटवारी जी देवे नहीं फसल री गिरदावरी गिरदावरी नहीं करी है ला कटे ये मित्र जार तू पतो कर थार कागजिया में कमी है ली
2: जागरूकता में कमी होगी
3: जागरूकता में
2: सच्ची बात
3: देखो जीवन अगले चावे तो खुद नहीं लेना पड़ी
2: सच्ची बात है देखो थे जी की योजना रो नाम लियो नहीं आ योजना चल रही है 2016
3: अच्छा कहाँ से पुरानी है जानी तुम्हें क्यों अगले फायदा ले
2: और इरो मोटो उद्देश्य वो ही है थे बतायो कि आर्थिक सुरक्षा देनी किसान ने किसी भी तरह से जिनको जोखिम हुए नहीं भी जोखिम ने कम करनो और किसान हमारे आय ने सुरक्षित करनी
3: हाँ आप फूटरी बात बताई थे भाई देखो बे अंडा तारी हिफाजत कोई फसल बीमा योजना हुआ है तो फूटरी बात है और इन खातर अपन कहीं करनो कहीं होते कि क्या
2: इन खातर अपन है जिसका कागज चीज है नहीं योजना खातर योजना बीमा
3: योजना
2: तो आधार कार्ड है बैंक पासबुक है अपना जमीन का रिकॉर्ड है और फोटो लगानी हो मोबाइल नंबर अपन एक जिसको अपन लंबे समय से है आपा खाने वो नंबर देनो है
3: एर कोई किसान होना और प्रमाण भी देना भी हूँ
2: वो तो देनो ही
3: पड़ेगा बात हरी आईडी भी एक बात बोली है फार्मर आईडी बात हो ग्राम काम आवी है और मोबाइल नंबर थार भी जुड़ा होना चाहिए आधार हूँ बैंक ओटीपी आई हूँ
2: बैंक खाता होना जरूरी
3: है बैंक खाता होना जरूरी
2: और वो जी को बीमा हुए नहीं किन किन परिस्थिति में हो सके अपन बीमारी रकम कद मिल सी
3: अच्छा
2: सूखो पड़ गयो है बाढ़ आ गई है ओलावृष्टि है चक्रवात है अत्यधिक बारिश होगी या थे को जिया कोई टिड्डी दल आ गयो और कोई रोग लाग गयो ऐसे अगली कंडीशन में परिस्थिति में अपन बीमित राशि जी की
3: बताओ मिल सके कोई नुकसान हो या प्राकृतिक आपदा है तो 14 दिन तक आप भी दावो कर सको या मैं कटी बांचो मन थोड़ी थोड़ी याद आवे
2: बिल्कुल आप बात अपन जानकारी नहीं है नहीं पर सरपंच साहब खंजा पर बात कर
3: हां तो प्लीज जी पूछ ये मित्र मत भाई जो को बैठा वो आप
2: कर कोई आसे पासे भाई जानकार है नहीं तो भी आपको जानकारी
3: फायदा लियो मैं बता दे
2: बिल्कुल बिल्कुल तो आज की एज की योजना है केंद्र सरकारी जद ही फायदो देवे जद आप जागरूक रेवा
3: पोटरी बात है
2: और एक दूसरे ने बताओ यानी कि आपने जानकारी यार पड़ोसी ने नहीं
3: मुकार कहीं रखनी वो आपने बात तो कही अब हां दे तो सरकार
2: सरकार देसी
3: प्रधानमंत्री
2: कई गांव तो आदर्श गांव है बे कहीं करे गांव में सगला किसान भाई बंधु सगला ने
3: जागरूक
2: और पूरो रो पूरो 100% गांव है जिको भी योजना से जुड़ो है
3: कई बात करिए
2: तो ऐडा गांव भी है बे आदर्श गांव मानी चाहिए बट लोग जी का है बड़ा स्याणा मानी चाहिए और पूरे भारत में सबसे आगे मानी चाहिए बे लोग
3: अब जगह ग्वाड में बैठे है नी हथे करे तास घर ले गट्टे मत है आने भी थाली बात हो लागी बे कोई लुकार कौन राखनी कोथली में गुड़ कौन बांधना
2: सच्ची बात
3: अगला बतानी है बात और फायदा लेना है
2: बिल्कुल
3: अब वो गीत

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें। जब

0: और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: राकेशभाई संदेशा और फूटरी बात पछे बारी यहाँ है कि अपन लोग कहीं है कि बात जीव दयारी करे हा गाय ने बचाव री करे हा वरण गोचरी बात करे हा अपनी सरकार में इस अधिनियम बनाया है जकर मायने गोचर बचनी चाहिए वरण बचनी चाहिए और आज भी ऐसा गांव शहर रहा दौड़ा इसी वन भूमि मिले जठे गाया विचरण करे चौखी चरे लोग बठे लकड़ी को काटे नी वही कोई हुकी लकड़ी उठार लिए या बड़ी तक खातर तो अलग बात है पर लाने की जरूरत ही कोनी अपनी उज्ज्वला योजना।
2: कई बार आप देखा भी है कि शहरी कर रहे दबाव में योजना वा जिकी है गोचर और वन भूमि जिकी है बिना कदी कदी या नुकसान पहुंचने की संभावना हुए
1: पर सरकार वो कदम उठावे कि मेरे एवज में कोई दूजी जमीन गाया खातर और खातर देनी पड़े और अब जरूरत आ है कि थे कोई दिया बत्ती अल्टे में
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सतगुरु री कोई सीख या कोई
2: अब्दुल शकूर सुलेमान ने गाय उड़ाए फूट रो सो एक
1: मानस
2: सतगुरु दीनी बताए अर्जस है सुना।

0: वाह भाई राकेश भाई, फोटो गर्जस सुनाए। और देखो अपन दलाली हरे नाम हरे करनी है आदमी ने सुगरो ने और नुगरो ने इन ही एक रहा गई कार्यक्रम रो भगत पूरो यसा सीख दे रहा हूँ आप रहे तारो साथी रामस्वरूप बिस्नोई यार
1: राकेश कुमार जोशी ने
0: मोकला मोकला

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, प्रस्तुत कर रहे थे श्री रामस्वरूप बिश्नोई और श्री राकेश कुमार जोशी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये गीत सुन रहे थे आप डॉक्टर प्रेम सिंह भंडारी की आवाज में, और लीजिए सुनिए गजल, स्वर है स्वाति नेतेकर का।

स्वाति नित्यकर की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजे हैं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने हम दीवाने प्यार के फिल्म से लिया है। स्वर है अलका याग्निक का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब सुनते हैं दिल तुझको दिया फिल्म का गीत, आवाज है किशोर कुमार की।

चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज में। ये फिल्म है दुश्मन।

ये आवाजें थी उदित नारायण और लता मंगेशकर की, और ये फिल्म थी दुश्मन। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में पहली फिल्म का ये गीत।

सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों के गाए पहली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत।

0: ये स्वर था बिहारी लाल कथक का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। स्वर है दीपाली साठे का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल।

नज़्मा बानू के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9।

0: लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज एट 9।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
3: आज पंजाब

0: करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: थ्री स्टेट विजिट्स,
4: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन

0: आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति

0: का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: The Prime Minister said these railway stations are equipped with all the modern facilities. He said the transformation of these stations is part of one of the world's largest station redevelopment programs, Amrit Bharat Station Scheme.
0: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Kent Railway Station. Union Minister of Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav and other dignitaries were also present on the occasion. Prime Minister Modi also inaugurated national highway projects including a four-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway and laid the foundation stone for the development of six-lane greenfield Southern Ludhiana Bypass. Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at the Jind railway station in Haryana. The launch marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Prime Minister also laid the foundation.

ये गीत हमने सावन फिल्म से लिया था। आवाजें थी शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार को। ये फिल्म है 9-2-11।

0: भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, हम हरा ही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए।
1: ये स्वर था किशोर कुमार का और ये फिल्म थी 9-2-11। लीजिए अब हम सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में अनमोल मोती फिल्म का ये गीत।

0: महेंद्र कपूर के गाए अनमोल मोती फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीटिंग वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है और आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है परिचर्चा। विषय है नई शिक्षा नीति 2020। सहभागिता है श्री नवदीप सिंह बेंस और श्री बजरंग सिंह राठौर की। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं श्री प्रशांत बिस्सा। प्रस्तुति सहायक है श्रीमती बरखा थानवी व्यास और प्रस्तुति है श्री रेवंत राम लेघा की। संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो प्रस्तुत है परिचर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज की हमारी परिचर्चा का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है और जब शिक्षा नीति में बदलाव होता है तो उसके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ते हैं। वर्ष 2020 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत के शिक्षा ढांचे में व्यापक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर समग्र विकास, कौशल आधारित शिक्षण और भारतीय संस्कृति व मूल्यों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। इस परिचर्चा में हम जानेंगे कि यह नई नीति हमारे शिक्षा तंत्र को किस प्रकार बदलने जा रही है, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के लिए इसके क्या मायने हैं और आने वाले समय में ये किस दिशा में हमें ले जाएगी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ व्याख्याता और शिक्षाविद डॉक्टर प्रशांत बिस्सा। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बजरंग सिंह राठौड़, पूर्व प्रोफेसर और वरिष्ठ शिक्षाविद। उनका साथ दे रहे हैं महारानी सुदर्शन राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नवदीप सिंह बेंस।
2: नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष परिचर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बजरंग सिंह जी राठौड़ साहब सेवानिवृत्त प्राचार्य है, साथ ही प्रोफेसर नवदीप सिंह जी बेंस साहब है जो कि महारानी सुदर्शना महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। प्रोफेसर बजरंग सिंह जी बहुत लंबे समय से 40 साल से लगभग शिक्षा से जुड़े हुए लोक प्रशासन के व्याख्याता रहे और बाद में प्रोफेसर रहे। इनका शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग और योजनाओं में एक बड़ा नाम रहा है। इसी प्रकार प्रोफेसर नवदीप सिंह बेंस वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, साथ में कई छात्रों का शोध कार्य और कई शैक्षिक नीतियों पर इनका काम रहा है। आज हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या ये कहें नई शिक्षा नीति 2020, दोनों ही में ऐसा देखा गया है कि भारत की आजादी के बाद लगातार ये शिक्षा नीतियां बनती रही है, पहले 1968 में, फिर 86 में और अब 2020 में। आजादी से पूर्व में भी भारत, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार के लिए जाना जाता था, और आप आजादी के बाद भी ऐसा देखा गया कि विश्व में अपनी एक विकसित राष्ट्र के रूप में छवि बनाने के लिए शिक्षा का बड़ा रोल रहा है। और इसी शिक्षा के रोल को देखते हुए समय समय पर तत्कालीन जो सरकारें रही है वो शिक्षा पे अनवरत प्रयोग और काम करते रहे। उसी के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये एक बड़ा शिक्षा का बदलाव किया है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। पुरानी कई चीजें जो बदलाव की जानी थी, जिनके लिए 1992 में कई सुझाव भी आए लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो सके, उन सभी कमियों को दूर करते हुए इस शिक्षा नीति को तैयार किया है, जिसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो हम आज हमारे सामने बिराजे शिक्षाविदों से इस पे राय करेंगे। और मैं ये जानता हूं कि आज परिचर्चा सुनने वाले सभी लोगों को नई शिक्षा नीति की कई ऐसे पहलुओं का ध्यान आएगा जो आज तक नहीं सुना है। मैं परिचय के लिए पहले प्रोफेसर नवदीप सिंह बेंस साहब से अनुरोध करूंगा शिक्षा नीति पे दो शब्द पहले कहें, फिर हम इस पे चर्चा शुरू करेंगे।
3: धन्यवाद प्रशांत जी, आपने जो अभी NEP के बारे में 2020 के बारे में जो बात चर्चा शुरू की, वास्तव में ये एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा एक बदलाव आहूत किया गया है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि भाई बहता पानी निर्मला, एक जो

0: वही पानी निर्मल होता है जो लगातार बदलता है, या वही चीज ज्यादा सक्सेसफुल होती है जिसमें लगातार बदलाव होते रहे। और नई शिक्षा नीति में यह बदलाव तो करीबन 34 वर्ष बाद हुए हैं, 1986 के बाद में जो दूसरी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था उसके बाद तीसरा यह हुआ है। यह आवश्यक भी था क्योंकि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों का या विद्यार्थियों का उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। वो विकास उस नीति से थोड़ा वो लीक से हट गया था कुल मिलाकर, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि वो उसको हम जो है हम उसको रोजगार से हम नहीं जोड़ सक रहे थे, या उसके अंदर हम बच्चों में वो संस्कार डेवलप नहीं कर रहे थे कर पा रहे थे जो होने चाहिए। तो इस नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरह से हमारे को सरकार ने एक तरह से यूं समझो कि नई आने वाली जनरेशन को एक तोहफा दिया है, और ये वास्तव में अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सही ढंग से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो वास्तव में इससे एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में हमारे विद्यार्थियों में देखने को मिलेगा।
1: अनुरोध करूंगा भजन सिंह जी से कि वो अपना परिचय के साथ ही इस विषय को थोड़ा सा समझाएं।
2: धन्यवाद प्रशांत जी। मैं पिछले 40 वर्षों से उच्च शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ रहा। जहाँ तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रश्न है, देखिए ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो शिक्षा नीति थी वो 68 के अंदर आई, दूसरी 86 के अंदर आई, उसके अंदर आंशिक परिवर्तन हमने 92 के अंदर किया, और वर्तमान में ये जो 2020 की शिक्षा नीति है इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन आए लाए गए हैं जिनके अंदर हमने कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं और कुछ हमारा वैल्यू सिस्टम जो हमारा है, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, उनकी हम किस प्रकार से इन बच्चों के माध्यम से समाज के अंदर पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इसका प्रयास भी हमने उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने किया है। तो अगर हम ये कहें कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, या हमारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा पद्धति हो, उसमें एक रूपांतरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास हमारी इस नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे हमारी जो पहले 10+2 की जो सिस्टम था हमारा, उसको अभी इन्होंने 5+3+3+4 के अंदर विभाजित किया है, और इसके माध्यम से जो एक छोटी उम्र के अंदर बच्चों के अंदर स्कूल्स के अंदर विद्यालयों में जाने के को लेकर के एक संकोच होता था, तो उसको मिटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि एक 3 वर्ष का बच्चा जब स्कूल्स के अंदर जाए तो उसको इस प्रकार का क्यूरिकुलम पढ़ाया जाए जहां पर उस पर किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं हो और वो खेल खेल के अंदर शिक्षा जो है वो ग्रहण करे। और इसीलिए 3 वर्षीय बच्चे को जब स्कूल्स के अंदर उसका दाखिला करवाया जाता है तो 3 वर्ष तक वो केवल खेलता है, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करता। देन उसके बाद में प्रथम और द्वितीय जो कक्षा है वहां भी उसका किसी प्रकार का कोई उसकी परीक्षा वगैरह आयोजित नहीं की जाती। जब वो प्राइमरी श्रेणी के अंदर आ जाता है तो वहां उसकी सारी की सारी शिक्षा जो है, तो फाउंडेशन जो है हमारा उसका 8 साल तक का हो गया। देन उसके बाद में 8 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है उसका प्राइमरी का जो लेवल है वहां पर वो अपनी मातृभाषा के अंदर जो भी उसकी लोकल डायलेक्ट है उसके अंदर वो शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ उस पे किसी प्रकार की अंग्रेजी की कोई बाध्यता नहीं होती। और उसके बाद में जब वो 6th से लेकर 8th तक की जो एजुकेशन है वहां पर वो एक जो भी लैंग्वेज है हमारी, आपने देखा होगा हमारे संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, उनमें किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, और अंग्रेजी को बाद में उन्होंने एक फॉरेन लैंग्वेज को 9वीं से लेकर 12वीं तक किया। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये आया कि 6th onwards हमने वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया। दूसरा जो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो मातृभाषा के अंदर पढ़ाई करें, और मातृभाषा के अंदर जो पढ़ाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी एक समझ जो है वो एक मौलिक समझ जो है उनकी विकसित होगी। तो हम ये कहें कि जो लॉर्ड मैकाले का जो सिस्टम था जिसके माध्यम से जो हमारी 1835 के जो अंग्रेजी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने जो अंग्रेजी को अनिवार्य किया था वो कहीं ना कहीं अब इस शिक्षा नीति के अंदर जो है अंग्रेजी को ज्यादा महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा है, और हमारे छात्रों को हम भारतीय मूल्य परंपरा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो था हमारा, जो ब्रिटिशर्स के समय आपने देखा होगा कि जब 1835 में जब लॉर्ड मेकाले ये एक्ट लेकर के आए थे, तो लॉर्ड मेकाले ने कहा कि हमारा जो शिक्षण का माध्यम हो वो अंग्रेजी हो और ग्रंथ जो पढ़ाए जाएं वहां के ग्रंथ ही पढ़ाए जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा वहां हमारे उस समय

0: संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज थी या अरेबिक लैंग्वेज थी, उसके माध्यम से हमारी पढ़ाई होती थी। परंतु ब्रिटिशर्स ने और लॉर्ड मेकाले ने कहा कि जो भारतीय जो ज्ञान है उसको हम नहीं पढ़ाएंगे, और उन्होंने चाहे वो फिलोसफी हो चाहे साइंस हो या दूसरे विषय हो, उनकी शिक्षा ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से देना प्रारंभ किया। तो वर्तमान में इस शिक्षा नीति के अंदर जो भारतीय नॉलेज सिस्टम की जो बात की गई, मैं कहता हूँ ये बहुत ही एक अच्छा कदम है। और चूंकि हमारे युवा जो हैं उनकी संख्या 65% युवा हैं, और युवाओं के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो उनके कौशल को लेकर के है, तो इस शिक्षा नीति के अंदर कौशल विकास की बात जो है वो बहुत की गई है।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के बारे में आपने बताया, शिक्षा नीति किस तरह से अपने बदलाव लेती रही है, और ये बदलाव जो है आज के समय को देखते हुए बहुत आवश्यक भी है। और इसमें इस शिक्षा नीति की जो सबसे जो खूबसूरती है वो ये है कि इसके जो पांच इन्होंने जो स्तंभ बनाए गए हैं या पिलर्स हैं जिसके आधार पर ये पूरी शिक्षा नीति कार्य करती है, जैसे एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा आप इसको कह सकते हो कि इक्वलिटी है कि भाई सबको समानता का अधिकार के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए, तीसरा क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है कि अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हम वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और वो किस तरह से उसकी हम जिम्मेवारी तय कर सकते हैं। तो ये चीजें जैसे एक्सेसिबिलिटी है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ कि इसमें कौशल विकास जैसे आपने बात की, तो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं या विद्यार्थी ऐसे स्थानों के दुर्गम स्थानों के जो विद्यार्थी हैं जो इस शिक्षा से वंचित ना हो, उसके लिए जो प्रयास है वो इस शिक्षा नीति के अंदर पूरे रखे गए हैं कि कैसे हम, और उसके अंदर ये आजकल जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, डिजिटलीकरण जो हो रहा है वो इसी वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल माध्यम ऐसे हैं कि उनसे हम उन एरियाज तक को भी टच कर सकते हैं जहाँ के बच्चे किसी वजह से शहरी क्षेत्रों में या अपने नजदीकी कस्बों में जाने में सक्षम नहीं है। तो ये सोच जो है ये भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूसरी बात इक्वलिटी की है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है, सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, इसमें वंचित तबके हैं जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है या पिछड़ा वर्ग है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इनको सबको शिक्षा का समानता का अधिकार है और क्वालिटी की शिक्षा का अधिकार है कि उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो क्वालिटी की एजुकेशन उसमें होनी चाहिए और ये अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब इसके अनुसार ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि शिक्षा कोई मान लो छात्र आपका लेना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, वो डिजर्विंग है या वो पात्र है लेकिन वो किसी वजह से आर्थिक आधार की वजह से या किसी और पारिवारिक कारणों से उसको वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो वो उसमें ये शिक्षा उसको प्राप्त करना बाधा नहीं हो, तो ये उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी तो तय है ही, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि शिक्षा से हम किस तरह का समाज तैयार कर रहे हैं, कैसे विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखो ये विद्यार्थी यही आने वाले समाज के कर्णधार हैं, तो जैसा हम अपने विद्यार्थियों को या हमारे स्टूडेंट्स को हम तैयार करेंगे वैसे ही हम समाज का निर्माण करेंगे। तो ये शिक्षा नीति के कुछ जो पांच जो महत्वपूर्ण स्तंभ है ये वास्तव में बहुत ही सोचने वाले विषय है और इस पर हमें काम करना चाहिए। देखिए सरकार कि कोई भी नीति, कोई भी सरकार की कार्यप्रणाली है वो जनहित की होती है और कल्याणकारी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए या उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जाए, उस बात पर कोई भी नीति जो है उसका सफल होना और असफल होना उसी पर निर्भर करता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, हम शिक्षाविद हैं, जो ये नई शिक्षा नीति की जो मुख्य उद्देश्य है उन उद्देश्यों की पूर्ति हम किस लेवल पर और किस प्रकार कर सकते हैं।
2: तो अभी तक जो हमारे विचार सामने आए उसमें बहुत महत्वपूर्ण विचार, एक तो मैकाले के आधार पर अंग्रेजी माध्यम का बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं है या किसी भाषा विशेष का बाध्यता नहीं है, साथ ही सर ने जैसे बताया कि समानता का अधिकार और सभी को शिक्षा मिले, ये सारी समस्याएं जो पुरानी शिक्षा नीतियों में थी उसको कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में बनाया गया। और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि कौशल आधारित शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट आधारित शिक्षा या ऐसी शिक्षा जिसमें सभी को एक साथ एक समान शिक्षा मिल सके, ऐसी नई शिक्षा नीति बनाई है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूली शिक्षा और महाविद्यालयी शिक्षा या विश्वविद्यालयी शिक्षा में जो आपस का कोऑर्डिनेशन है, जो नीचे से ऊपर तक एक शिक्षा का स्रोत बने, उसमें हमारी नई शिक्षा नीति का क्या महत्वपूर्ण पद है या क्या महत्वपूर्ण रोल रहेगा, इस पे मैं सोचता हूँ कि शिक्षाविद अपना विचार करें। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे स्कूल शिक्षा में कक्षा 6 से वो एक तरह की डिजिटल और कोडिंग सिस्टम बता रहे हैं, भाषा में अलग अलग भाषाओं पे बात करने लगेंगे या उनको कुछ ऐसे कौशल सिखाने लगेंगे जो बच्चा अपने आगे जाके आत्मनिर्भर बन सके। ये महत्वपूर्ण

0: डिफरेंट इस शिक्षा नीति में, क्या इस शिक्षा नीति से उन्हीं आधार पर उस बच्चे को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा भी मिलेगी, और उस शिक्षा में आपका क्या विशेष ध्यान केंद्रित करेंगे? भजन सिंह जी।
1: प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, उसके तहत न केवल ये रूपांतरण की प्रक्रिया स्कूल एजुकेशन के अंदर हुई, बल्कि महाविद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया। और हमारा जो 21वीं जो सदी के साथ में जुड़ करके हमने

0: महाविद्यालय शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया और हमारा जो 21वीं जो सदी के साथ में जुड़ करके हमने देखा कि हम वैश्विक दृश्य को देखते हुए हमारे शिक्षा नीति में हम किस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपने एक तो ये देखा होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे पहले हमारे यहाँ कई क्लास बनी हुई थी आर्ट्स कॉमर्स साइंस, अब नई शिक्षा नीति के अंदर जो है इसको बिल्कुल हमने हटा दिया है और हमने एक अंतर विषयक अप्रोच को हमने बढ़ावा दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को कहा गया। अब कोई भी छात्र जो है किसी भी संकाय का कोई भी विषय का चुनाव कर सकता है, तो अब आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात जो है वो नहीं रह गई। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया वो यह है कि अब जो कॉलेज की जो शिक्षा होगी उसको हमने चार भागों में बांट दिया। जो बच्चा केवल प्रथम वर्ष करके और अगर बाहर चला जाता है किन्हीं कारणों से, और आपने देखा होगा हमारे यहाँ कई बार बच्चे रोजगार के लिए चले जाते हैं, हमारी बच्चियां हैं उनकी मैरिजेस वगैरह हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो अध्ययन बीच में ही छोड़ देती है। तो ऐसी स्थिति में ये नई शिक्षा नीति में ये सुनिश्चित किया गया है कि पहला वर्ष यदि वो कंप्लीट कर लेता है तो वहाँ उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। यदि कोई बच्चा दो वर्ष के बाद में अध्ययन को जारी नहीं रख पाता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाए। तीन वर्ष अगर उसने पूरे कर लिए हैं तो उसको हम डिग्री प्रदान करें, और यदि वो चौथे वर्ष में भी अगर कंटिन्यू करता है तो उसके अंदर उसको शोध की डिग्री जो है, रिसर्च की डिग्री हम प्रदान करें। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो एक बदलाव आया है वो ये आया है कि यदि आपने किसी भी लेवल पे छोड़ा है महाविद्यालय या कॉलेज, तो ऐसी स्थिति में वो क्रेडिट आपकी हमेशा बनी रहेगी और आप कितने भी अंतराल के बाद में जब आप पुनः वापस अध्ययन अपना नियमित जारी रखना चाहेंगे उस दिन आपको उसी जगह से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने एक वर्ष बाद छोड़ा तो अब आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। ऐसे ही अब जो ग्रेजुएशन करने के बाद में जब अगर आप कोई भी बच्चा पीजी करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में यदि आपने चार वर्षीय डिग्री कोर्स किया है तो वो बच्चा पीजी करने के लिए केवल एक वर्ष के अध्ययन की उसको आवश्यकता पड़ेगी, और जिन बच्चों ने डिग्री की है वो बच्चे अगर वो पीजी करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको दो वर्षीय पीजी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एमफिल की जो पहले शिक्षण की जो व्यवस्था थी, एक वर्षीय एमफिल का कोर्स था, उसको इस नवीन शिक्षा नीति में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर डिसकंटिन्यू जो है वो कर दिया गया है। जहां तक परिवर्तन का सवाल है तो इसमें देखिए बहुत से ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जो पहली बार हुआ है। ऐसे ही हमारे आपने देखा होगा एक सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया भी इस शिक्षा नीति के अंदर एक भाग बनी, और जो पहले हम एक वर्षीय जो परीक्षाओं का आयोजन किया करते थे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के अंदर, वो आपने देखा होगा हमारा सेमेस्टर सिस्टम के अंदर जो है वो परिवर्तन हो गया। अभी हम बच्चों के जो मार्क्स वगैरह जो दे रहे हैं उसको हमने ग्रेड के अंदर परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से आपने देखा कि हमारे यहाँ एक ABC के नाम से जो एक क्रेडिट का जो स्कोर है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर जो होता है वो आपका कंटिन्यू करे, और वर्तमान में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्वयं पोर्टल के माध्यम से, मॉक कोर्सेज के माध्यम से बच्चों को इस प्रकार की व्यवस्था दी गई कि वो उन पोर्टल्स पे जाकर के पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं और वहाँ की जो भी क्रेडिट होती है वो अपने कोर्स के अंदर जो है जुड़वा सकते हैं।
1: सर, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि इसमें कोई भी बच्चा किसी भी स्तर पर, चाहे अपने ग्रेजुएशन के दौरान या पीजी के दौरान, अगर वह बीच में कोई कारणवश नहीं करता है तो वह उसको पूरा करने का दूसरे कई साधन बता दिए जाते हैं, और इसके भी साथ आपने एक क्रेडिट बैंक का जो बताया, ये भी मेरे को लगता है विश्व स्तर की जो शिक्षा है उसका ही एक भाग होगा कि विश्व में कई देशों में शायद इस तरह की शिक्षा पद्धति थी जहाँ क्रेडिट बैंक का साधन था। आज हम हिंदुस्तान में बच्चों को क्रेडिट बैंक के माध्यम से किसी भी अन्य कौशल किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप से या किसी से जोड़ के उसके क्रेडिट को भी अपने एकेडमिक में एड करवा सकते हैं और उसकी भी वैल्यूएशन होती है। ये जो सिस्टम लगा है आते हुए कई सालों बाद, ऐसा लगता है कि हर जो यहाँ का नागरिक जो शिक्षा के लिए तत्पर है उसको शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा काम भी मिलेगा और रोजगार के लिए भी उसको साधन मिल जाएंगे। उसी क्रेडिट के आधार पर सरकारी संस्थाएं वो उनको उसमें प्लस करेगी। मैं आगे नवदीप सिंह जी से बात करूंगा कि ये जो क्रेडिट सिस्टम से हम UG से PG में जाते हैं तो क्या बच्चे को वहां भी

0: अगली क्लास में भी अपने विषय को परिवर्तन करना या किसी प्रोफेशनल विषय को नए सिरे से पीजी में लेने की स्वतंत्रता इस नई शिक्षा नीति में है, इस पे विचार करना चाहूंगा मैं।
1: हाँ, देखिए अभी इस प्रशांत, इसमें जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो चल रहा है, ये प्रोफेशनलिज्म की ओर हम जा रहे हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये यूजी पीजी दोनों उसमें है। दूसरा, अभी जैसे हमने लेटेस्ट ही, आपने अगर देखा होगा तो हमने आज ही नए कोर्सेज, हमने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार एईडीपी एक जो है उसके तहत हमने दो नए कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। एईडीपी का मतलब जैसे आपके अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम है, उसमें हम दो नए कोर्सेज हम एमएस कॉलेज में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपके एक तो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म है जो होम साइंस से संबंधित है, और दूसरा BFSI जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस सेक्टर और प्रोग्राम है, इसका सिलेबस जो है बीकानेर यूनिवर्सिटी से इसका सिलेबस तैयार हो चुका है। तो ये दो प्रोग्राम हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, 8 तारीख तक हमने उसके एडमिशन किया। तो ये एक्चुअल में कौशल विकास से संबंधित है कि बच्चा सिर्फ एक बेसिक शिक्षा ही नहीं ले, वो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ भी जाए, रोजगार से जुड़ी एजुकेशन उसकी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा वो पढ़ करके निकले तो वो एक हुनर लेकर के निकले, जिससे उसको रोजगार लेने में या अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने में उसको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो।
0: सर, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको विश्व स्तर पर बहुत सराहना मिलती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चों का जब हम मल्टीपल एग्जिट और एंट्री में लाएंगे तो उन बच्चों में एक अलग तरह का विकास होगा, कि एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा अगर इकोनॉमिक्स में अपने आप को सुलभ चाहता है तो वो वहां भी पढ़ाई कर सकता है, कोई जियोग्राफी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। क्या इससे मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट बच्चों का सामने आएगा, इस पे मैं सोचता हूँ भजन सिंह जी साहब से बात करना चाह रहा।
2: सन जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो अपनाई गई है इस पॉलिसी के अंदर, वो ये कहती है कि अब आप विषय या संकाय से जुड़े हुए नहीं हैं, अब आप कोई भी अपनी इच्छा का किसी भी विषय का चयन आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब विषय की बाध्यता समाप्त कर दी तो अब इस शिक्षा नीति के तहत जो बच्चे पास आउट होकर के निकलेंगे वहाँ कला कॉमर्स या विज्ञान की बात नहीं होगी, वो ग्रेजुएट कहलाएंगे बच्चे, ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट डिग्री। तो अब दूसरा, कई बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि वो मैथमेटिक्स के साथ में फिलॉसफी पढ़ना चाहता है, या मैथमेटिक्स के साथ में म्यूजिक पढ़ना चाहता है, या मैथमेटिक्स के साथ में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहता है। और आपने अगर यूपीएससी परीक्षाओं के दौरान भी अगर आपने देखा हो तो आपने देखा जो IITian जो हमारे बच्चे हैं वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषय देकर के जब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर आने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं, और बहुत से IITian। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिन लोगों ने गहनता पूर्वक पॉलिसी पर विचार करके तो एक महत्वपूर्ण उस चीज को उन्होंने छुआ है कि हम मल्टी डिसिप्लिन की। दूसरी चीज देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक हम हमारे युवाओं को जड़ों से नहीं जोड़ेंगे और हमारे जो वैल्यूज हैं, भारतीय जो वैल्यूज हैं, भारतीय हमारा ज्ञान है, भारतीय हमारी परंपरा है, उसके साथ जब तक हम बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम उनके अंदर वो एक राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो पैदा नहीं कर पाएंगे। और इस शिक्षा नीति के अंदर जो IKS की जो बात की गई है वो इसीलिए बात की गई कि हम हमारे युवाओं को हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण जो थाती रही, आप ऋग्वेद की बात करें या आप आयुर्वेद की बात करें या आप वास्तुशास्त्र की बात करें, तो बहुत से ऐसे हमारी ज्ञान परंपरा, भारत की तो ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो हम हमारी चरक संहिता है आयुर्वेदा के अंदर में मिली। जब तक हम हमारे युवाओं को नहीं बताएंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो अरविंदो ने कहा है कि जो समाज, जो व्यक्ति, जो बच्चे अपनी जड़ों से अगर कट जाते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे युवाओं को जड़ों के साथ में जोड़ना है, और इसकी स्थापना जब ही होगी जब हम हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान की कुछ शिक्षण पद्धतियां डेवलप करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति का एक भाग है कि हमारी जो पेडागोजी है कि हम किस प्रकार से शिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसी स्थिति में संरचनात्मक परिवर्तन भी करने होंगे, और आपको शिक्षा के अंदर रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि ये नवीन शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है 30:1 होना चाहिए, एक शिक्षक पर 30 छात्र।
0: आपके आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है इस नई शिक्षा नीति में, और उसके

0: आधार पर भारत में शिक्षा का विकास संभव हुआ है क्योंकि हमने इस नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत बड़ा महत्व दिया है। मैं आपकी बातों से ये समझ पाया हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अपनी पूरी शिक्षा की टीम इस आधार पर तैयार की कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़े। साथ में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखा कि हमने विश्व की महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित किया है कि वो हमारे भारत में आकर अलग अलग जगह अपने सेंटर स्थापित करें और वहाँ हमारे भारतीय बच्चों को वो अपनी सिस्टम से शिक्षा पद्धति को साथ में जोड़े। तो हमने करीब करीब 600 विश्व की महान विश्वविद्यालयों को और बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को इंडिया में आमंत्रित किया है। तो क्या इसका प्रभाव हमारे को ग्लोबलाइजेशन के रूप में विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में और 2030 तक हमारे टारगेट पूरे करने में क्या ये ग्लोबलाइजेशन में हमारे को महत्व देंगे?
1: प्रशांत जी, 21वीं सदी के जो हमारे प्रयास हैं उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा और जब तक हमारे छात्र वैश्विक परिदृश्य से परिचित नहीं होंगे जब तक आप अकेले यहाँ विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और चूंकि वैश्विक लेवल पर बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी उनसे रूबरू होना पड़ेगा, जभी जाकर के हम एक समावेशी विकास की कल्पना जो है हम कर पाएंगे।
0: यही बात मैं प्रोफेसर नवदीप सिंह जी से करना चाहूंगा क्योंकि वनस्पति शास्त्र में कई शोध और कई ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो में बहुत प्रसिद्ध है। क्या भारत में उन विश्वविद्यालयों का या उन इंस्टीट्यूट का आने से यहाँ के बच्चों का कई विज्ञान के विषयों में भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उनके विकास के लिए और भारत के विकास के लिए भी?
2: हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, ये देखिए वनस्पति शास्त्र के बारे में तो मैं आपको ये बताऊंगा, हमारा जितना भी आयुर्वेद है, जितनी भी आयुर्वेद पद्धति है, वो हमारे सारे वनस्पति विज्ञान से ही जुड़ी हुई है और हम वास्तव में इस आयुर्वेद के मामले में या वनस्पति विज्ञान के मामले में और दुनिया से बहुत ज्यादा समृद्ध है और श्रेष्ठ है। आज भी हमारे यहाँ हम उस ट्रेडिशनल तरीके से यदि हम अपना इलाज करवाते हैं लेते हैं काफी हद तक, इस तरह का अगर ज्ञान ग्लोबलाइजेशन लेवल पर अगर अपने देखें तो निसंदेह इसका तो लाभ बहुत मिलेगा। और दूसरी एक शिक्षा नीति के बारे में मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा था कि जैसे मैं अक्सर कॉलेज में हमारे महसूस करता हूँ कि एक GER होता है, GER का मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो अभी बहुत कम है और 2030 तक अभी वो उसको 2030 तक 100% लाने का टारगेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो वो अभी तक 50% 30-50% के बीच में ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉपआउट्स जैसे स्कूलों में ड्रॉपआउट्स होता है, तो ये इस चीज को इस एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया, ये एक बहुत अच्छा इसका पहलू है।
0: नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 सिस्टम जो लागू किया है उसका जो प्रभाव है क्या ये ड्रॉपआउट को कहीं कम करेगा या हम 2030 तक इस पूरे टारगेट को फिल करेंगे इस पद्धति से? दूसरा ये 2020 में जब ये पद्धति लगी थी शिक्षा नीति और आज 2025 है तो 2025 तक जो हमारा टारगेट था क्या नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम उस टारगेट पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? तो अब और क्या ऐसे हमारे को साधन अपनाने होंगे जिससे ये हम 25 तक का टारगेट पूरा कर सके?
2: तो ये इसके लिए देखो प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए, सरकारें नीति बनाती है, निर्देशन बनाती है, इनको फॉलो हम लोगों को करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए और ये तभी होगा। ये देखो केवल एक व्यक्ति का या एक संस्था का ये काम नहीं है, हम सभी को समग्र रूप से इसमें जिसको होलिस्टिक लेवल पर हम इसको करें तो वास्तव में जिस उद्देश्य को लेकर के ये आई है वो उसको हम सफल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे तभी हम इस नई एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल रूप से 2030 तक हम जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे।
0: तो आज की इस परिचर्चा का एक बहुत अच्छा निकल के आया है कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो भारत का एक आगे बहुत सुदृढ़ भविष्य बनाने के लिए है और शिक्षा के क्षेत्र में हम आते हुए 15-20 सालों में एक ऐसा विश्व में शिक्षित देशों के रूप में हमारा नाम रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के जितने भी घटक है वो सारे एक ऐसी सुलभ शिक्षा देने को तैयार है जो हर ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, चाहे गवर्नमेंट के स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल, सभी में समान शिक्षा देने के लिए बनी है और इससे हर पढ़ने वाला बच्चा आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी रोजगार से जुड़ेगा और अपना खुद का भविष्य बनाएगा। इससे न केवल उसका समाज का बल्कि पूरे देश का विकास होगा। नई शिक्षा नीति बनाने वाले सभी शिक्षाविदों को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और इस शिक्षा नीति का हर भारतीय को फायदा मिले ऐसी कामना करता हूँ।
3: अभी आपने सुनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विशेष परिचर्चा। कार्यक्रम की प्रस्तुति सहायक थी बरखा थानवी व्यास, प्रस्तुति थी केशम कविता देवी की और संयोजन था मीनाक्षी मलिक का।
4: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 10 बजने को है।

हाजिर है। मरमरी हाथ का गर सहारा मिला,

देखे तो जल जाएगा ये हकीकत। और शेर बतौर खास हाजिर है नौजवानों की नजर, ना सरे बज़्म बे पर्दा बैठा करूं, ना सरे बज़्म

कर द बैठा करो। देखो दीवाना कोई मचल जाएगा, ये हकीकत है के दूर जल जाएगा, ये हकीकत के मेहंदी

0: کا دل یوں شاید بہل جائے گا.
1: ایک شعر اور بطور خاص ملتا

जमाना आ गया तेरे हिसार में, फिर एक जमाना आ गया तेरे हिसार में। एक मतलब और एक शेर और हाजिर करता हूं कि कभी आंखों में अंगारे, कभी लब पर हजर रखना, कभी आंखों में अंगारे, कभी लब पर हजर रखना, हमेशा चाहता है शहर को वो पुरखतर रखना, हमेशा चाहता है शहर को वो पुरखतर रखना। चराग़े आखिरे शब का तमाशा बन न जाओ तुम, चराग़े आखिरे शब का तमाशा बन न जाओ तुम, जरूरी है हवाओं की शरारत पर नजर रखना, जरूरी है हवाओं की शरारत पर नजर रखना, जरूरी है हवाओं की शरारत पर नजर रखना। मैं एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूं।

शेर पेश कर रहा हूं फसल का। मोहब्बतों की किताबें तो चार

तो चाट आए मगर किताब दिल का वरक तार तार है कि नहीं। किताब दिल का वरक तार तार है कि नहीं। शेर बतौर खास इस गजल का, हवा की कैसे

किसका हुआ जा रहा है दिल मेरा, तुझे भी दिल पे तेरे इख्तियार है के नहीं, तुझे भी दिल पे तेरे

0: आपने सुना उर्दू कार्यक्रम गुलिस्ता, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छप्पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदले, आगे बढ़े, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
4: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात के 10:30 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए शौकत हुसैन खां का पूर्या कल्याण में गया ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शौकत हुसैन खां का राग पूर्या कल्याण में ख्याल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। रात के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण

0: लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिक विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।